0: बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का आपके अर्जुन मनी इस कार्यक्रम शुभकल में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि शुभकल कार्यक्रम में हम पर्यावरण से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं और हम बार बार जिक्र करते रहे चले आ रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अपना पर्यावरण बदल रहा है। आज भी अभी भी समय है कि हम इस पर्यावरण के प्रति अभी भी जागरूक हो और अपने साथियों से भी कहें कि आप भी जागरूक हो और साथ साथ में लोगों को भी बताएं कि अब हमें पर्यावरण को बचाने के लिए संकल्पित और दृढ़ संकल्प हमें लेना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि पर्यावरण अपना बदल रहा है और इस पर्यावरण का बदलाव ये संकेत देता है कि पर्यावरण जो आज हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बदलता चला जा रहा है, इसका कारण क्या है। कारण हम और आप सब जानते हैं कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, साथ में कार्बन जो निकलता है गाड़ियों से निकलने वाला, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कार्बन जो हमारे शरीर को भी नुकसान करता है, साथ साथ में पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है। तो ऐसे में हमें सोचने की बात है कि हमें इसको किस नजरिए से देखना होगा। आज के हमारे इस कार्यक्रम शुभकल में आज हम कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी पहल में तेजी से लाना ये हमें सोचना होगा, क्योंकि अब पृथ्वी दिवस भी है, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस इस ग्रह और उन सभी जीव प्राणियों जिन्हें इस आश्रय प्रदान करता है और खुशहाली के प्रति उत्पन्न चुनौतियों के बारे में वैश्विक एवं जन जागरूकता पैदा करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन एक सामूहिक जिम्मेदारी को दर्शाता है जिसकी आवश्यकता प्रकृति और धरती के साथ स्वभाव प्रोत्साहित करने के संबंध में 1992 की रियो घोषणा में जताई गई थी। इसका लक्ष्य मानवता के वर्तमान और भावी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी जरूरतों के बीच संतुलन कायम करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2009 में पारित प्रस्ताव संख्या जो हम बताने जा रहे हैं 63/278 के जरिए 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाने का निर्णय किया गया था। और भारत विश्व में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली में से एक है, जहां पर 37.70 करोड़ लोग शहरी क्षेत्र यानी 2011 की जनगणना की उसकी अपेक्षा पर बता रहे हैं, जो कुल आबादी का 33%। अनुमान है कि 2030 तक भारतीय शहरी जनसंख्या के स्तर पर करीब 40% बढ़ोतरी होगी। इसकी आबादी 58% यानी 58 करोड़ हो जाएगी। इस दौरान 2015 से 2030 की अवधि में भारत की शहरी आबादी में 16 करोड़ लोगों की वृद्धि होने का अनुमान ऐसा लग रहा है और जताया जा रहा है, ऐसा हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं। विशाल आबादी के कारण भारत वर्तमान ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले देशों में शामिल हो गया है। 2019 में जब भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 3.7 गीगा टन और इसका प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उत्सर्जन 2.7 टन था, परंतु भारत का ऐतिहासिक संचय 1870 से 2017 उत्सर्जन बहुत कम है, जो कि अमेरिका में 25%, यूरोपियन संघ में 22% और चीन में 13% की तुलना में 3% है। वैश्विक जलवायु जोखिम

सूचकांक 2021 के अनुसार 2019 में वैश्विक जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी दुष्प्रभाव से सर्वाधिक पीड़ित देशों में भारत सातवें स्थान पर था। भारत ने देश के रूपांतरण में शहरों की भूमि की पहचान की है। सतत विकास लक्ष्य, विशेष रूप से लक्ष्य संख्या 11, शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, उन्नतशील और टिकाऊ बनाना, और लक्ष्य संख्या 13 यानी जलवायु परिवर्तन और उनके दुष्प्रभाव को निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना को क्रियान्वयन करने के प्रति अपनी वचनबद्धता के अनुरूप भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया मजबूत बनाने के उपाय पहले से शुरू कर दिए हैं, ताकि शहरों को अधिक सक्षम एवं समावेशी एवं कार्बन में कमी के साथ टिकाऊ बनाया जा सके। भारत में जलवायु संबंधी कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन के बारे में 2008 की राष्ट्रीय कार्य संख्या यानी NAPCC अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की ऐतिहासिक शुरुआत और राष्ट्रीय स्तर पर लक्षित महत्वाकांक्षी एवं प्रतिबद्ध योगदान INDC कार्य योजना प्रस्तुत करना शामिल है इसमें। आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि ये सभी उपाय स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की भारत की नीतियों और उनके कार्यक्रमों को इर्द गिर्द केंद्रित करती है। इनमें से समन्वित शहरी केंद्र, कचरे से संपदा को बढ़ाना देना, सुरक्षित एवं स्मार्ट और टिकाऊ हरित परिवहन नेटवर्क की स्थापना करना, प्रदूषण में कमी और वन एवं वृक्षों का अक्षादान के माध्यम से कार्बन सिंक बढ़ाने की भारत के प्रयास शामिल हैं। तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं मित्रों, आपको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जरूर बताएंगे, छोटे छोटे बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, चूंकि हम बातचीत भी करते चले जाएंगे और हम गीत संगीत भी सुनते चले जाएंगे। एक महत्वपूर्ण गीत को हम सुन लेते हैं, पर्यावरण सुलभ। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम शुभ कल में। साथियों, हम उन आंकड़ों पर बातचीत कर रहे हैं और साथ साथ में कार्बन मुक्त दुनिया के लिए शहरी पहल में तेजी लाना, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो हम और आप देख रहे हैं कि कारों से निकलने वाला धुआं, खास तौर पर जो हमारी मीलें लगी हुई हैं या फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनसे निकलने वाला धुआं जो हमारे पर्यावरण को दूषित करता है। साथ साथ में आपको एक चीज और बता देना चाहते हैं कि वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में शहरों का लगभग 70% योगदान रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है, चाहे वो गाड़ियों के माध्यम से हो, चाहे फैक्ट्रियों की चिमनियों के माध्यम से हो, जिसमें परिवहन, भवन निर्माण, ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्र शहरी ग्रीन हाउस उत्सर्जन में बल्क योगदान के लिए जिम्मेदार हैं। आवश्यकता है कि इस बात की कि सभी संबंधित हितकारक शहरों और कस्बों में टिकाऊ एवं समावेशी बनाने के लिए मिलकर काम करें और वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन पर COP21 पेरिस समझौते जो हुआ था और सतत विकास लक्ष्यों के लिए प्रति हमें वैश्विक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने की आवश्यकता है, और विशेष रूप से लक्ष्य 11 जो है, जिसमें 2030 तक समावेशी, सुरक्षित, सम्पूर्ण और टिकाऊ शहरों के निर्माण की बात की गई है, जिसे हम SDG कहते हैं। जो SDG लक्ष्य 13 है, इसमें जलवायु परिवर्तन और उसके दुष्प्रभाव का मुकाबला करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान भी इसमें किया गया है। इसके अलावा हैबिटेट न्यू अर्बन एजेंडा भी व्यापक रूप से एक विस्तृत बहुस्तरीय एवं क्रॉस सेक्टरल फ्रेमवर्क तैयार करता है, जिसमें एक स्थानीय फोकस होता है जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई को तेज कर सकता है और सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय बनाने के लिए साधन प्रदान कर सकता है। इसे देखते हुए वैश्विक महामारी के संदर्भ में विश्व पर्यावरण दिवस और पृथ्वी दिवस निम्नांकित के लिए सभी हितकारकों के लिए नए अवसर प्रदान करते हैं। वैश्विक अभियान रेस टू जीरो और UN हैबिटेट और क्लाइमेट एक्शन फॉर सिटीज पर विचार विमर्श और विचार मंथन करना नवंबर 2021 के अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP26 के संदर्भ में स्थानीय सरकारों को अमल करने योग्य शून्य कार्बन योजनाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। विश्व की 7.5 अरब जनसंख्या में से आधे अधिक यानी 55% लोग अब शहरों में रहते हैं, जिनकी ऊर्जा खपत में 78% और वैश्विक CO उत्सर्जन यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 70% से अधिक जिम्मेदार हैं। 2030 तक विश्व की लगभग 60% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में होगी और इस तीव्र शहरीकरण से विशेष रूप से ऊर्जा खपत, औद्योगिक गतिविधियां और परिवहन से वांछित उत्सर्जन का बढ़ना जारी रहेगा। यह आकलन हम इसलिए बता रहे हैं कि यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमेशा की तरह व्यापार का रवैया जारी रखता है तो धरती का तापमान 2050 में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, जिसमें भयावह अनुपात के बाद प्राकृतिक आपदाएं होंगी। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन मानव बस्तियां, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और शहरी गरीबों के लिए असुरक्षित बनाता है। इसमें चरम मौसम घटनाओं का सामना करना पड़ेगा और इसमें प्रभावित लोग भी होंगे। किफायती और उत्सर्जन में आक्रामक कमी आने की कार्यनीति के साथ कम कार्बन वाली संसाधन कुशल हरित व्यवस्था अधिक लाभ देने के वादा कर रही है। साथ साथ में शहरी पर्यावरण प्रदूषण और आपदा रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन आकलन

अनुकूलन ढांचा विकसित करने तथा समान एवं अनुकूल कारणों के वित्त शोषण उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ अन्य उपायों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जैसे कि कम कार्बन फुटप्रिंट वाली भवन निर्माण सामग्री, रियायती क्षेत्रों और विकास केंद्रों की संतुलित आयोजनों जैसे कि उपायों के माध्यम से ऊर्जा सक्षम और जलवायु प्रकोप रोधी शहरों का निर्माण, ऊर्जा सक्षम भवन संहिता और प्रदूषण नियंत्रण अपव्यस्त प्रबंधन आदि के बारे में हम जन जागरूकता कर सकते हैं और जन भागीदारी के हितधारकों के बहुउद्देशीय सहयोग हम कर सकते हैं। और भी साथियों इस कार्यक्रम शुभकाल में बातचीत होगी। हम यहाँ पर एक गीत और सुन लेते हैं। पर्यावरण श्रोता बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

ओ भैया पेड़ ना कटाइयो, अभी आपने मस्ताना दिनेश मस्ताना और उनके साथियों की आवाज में इस प्यारे से पर्यावरण से जुड़ा लोकगीत को सुना, लोकगीत का आनंद लिया। साथियों अभी भी समय है कि हम अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अथक प्रयास करें, खासतौर पर उन शहरी क्षेत्रों जहां पर क्षेत्रवासी हमारे निवास करते हैं, शहरों के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रदूषण वहीं से फैलता है, चाहे वो वाहनों से निकलने वाला और चाहे वो चिमनियों से धुआं निकलने वाला, जिससे हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब भारत सरकार क्या क्या आश्वासन है शहरी क्षेत्र के लिए, भारत सरकार के मंत्रालय किस तरीके से शहरी क्षेत्र के लिए काम कर रही है, इस पर भी एक नजर डालते हैं। जो शहरी मामले मंत्रालय भारत सरकार ने 100 स्मार्ट शहरों के लिए फरवरी 2019 में जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन फ्रेमवर्क जारी किया था, जो शहरों के लिए जलवायु कार्रवाइयों की दशा में एक मार्गदर्शन ढांचा है और जिन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रति जिम्मेदार बनाने और उनके प्रति जोखिम कम करने के लिए मदद करता है। भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रम जैसे हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट शहर मिशन, अमृत, PMAY, शहरी परिवहन आदि शहरियों को जलवायु स्मार्ट होने के उद्देश्य प्राप्त करने की सहायता करेंगे। देश में जारी विभिन्न मिशन, विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत न केवल शहरों को सुविधाजनक बनाने बल्कि शहरों में बुनियादी सेवाओं जैसे जलपूर्ति, परिवहन, बिजली, नलजल, उपचार, ठोस अपशिष्ट जो रहते हैं उनका प्रबंधन करना, बढ़ती मांगों के को अधिक संसाधन कुशल, कम कार्बन एवं आर्थिक रूप से व्यवहार तरीके से पूरा करने के लिए मदद करेंगे। तो ये जो आंकड़े हैं जो हम कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता रहे हैं। एक और बड़े बात बताना चाहते हैं कि हमें बड़ी आवास परियोजना में थर्मल कंफर्ट तकनीक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर बल देना होगा। इस तकनीकी से प्राकृतिक जो बातयान तापमान और आर्द्रता नियंत्रण में मदद मिलेगी, इमारतों की आवासीय गुणवत्ता में वृद्धि होगी और उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर बनाना संभव होगा। इसलिए योजना एवं आवास कार्य नीतियों के एक नए प्रतिमान की आवश्यकता है जो समावेशी स्वास्थ्य एवं टिकाऊ आवास को बढ़ावा दे सके, परंतु

0: आधारित भवनों की लागत चूंकि सामान्य घरों की तुलना में थोड़ी अधिक है, इसलिए हमें सामूहिक आवास परियोजनाओं में थर्मल कंफर्ट को सक्षम करने के लिए उपयुक्त हरित वित्त शोषण तंत्र खोजने की आवश्यकता है। तो ये जो बातें हैं जो आपको हम कार्यक्रम सुपकल के माध्यम से बताने जा रहे थे, और भी बातें हैं जो चूंकि अब समय भी हो रहा है कार्यक्रम सुपकल से जाने का, अगले कार्यक्रम में हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे। तो आपके आरजे मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर हमारा 92-19-20-77-49। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति। आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
1: शुभ कल बदलती जलवायु के लिए।

0: साथियों नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
0: साथियों आप तो जानते हैं कि हम होंगे कामयाब कार्यक्रम के अंतर्गत हम समय समय पर अलग अलग तरह की जानकारी आप सभी के लिए लेकर हाजिर होते हैं। चाहे बात करें हम रोजगार सूचनाओं की या फिर व्यक्तित्व विकास की या फिर सफल कहानियों की या फिर छोटा काम बड़ा मुनाफा की, तो जैसा समय होता है वैसा काम हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो बिल्कुल साथियों आप दिल थाम कर बैठ जाइए और अपने कानों को खोल कर रखिए क्योंकि हम आपके लिए बेहद जानकारी लेकर आए हैं और बेहद जरूरी भी है ये जानकारी। तो आइए हम जानते हैं कि हम अपना व्यक्तित्व विकास किस तरह से निखार सकते हैं, क्या क्या टिप्स होती हैं जिनको अपना कर हम एक बेहतरीन पर्सनालिटी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि यदि हमारा युवा साथी कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसका व्यक्तित्व ही उसकी नौकरी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि व्यक्तित्व विकास निखारना यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना ये एक युवा साथियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है और खासतौर पर समाज के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में व्यक्तित्व विकास कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे और कुछ मूल मंत्र जो रहते हैं उसे भी हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से।
0: साथियों अगर हम व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं तो कैसे निखारें, सबसे पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है। तो उसके लिए हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तभी हमारे अंदर व्यक्तित्व विकास होगा और साथ में हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, हमें अपने ऊपर विश्वास भी होना चाहिए कि हम इस काम के लिए परफेक्ट हैं। साथियों 21वीं सदी में सफलता पाने का ये जो मूल मंत्र होता है यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके पास कुछ खास चीजें हैं जैसे कॉन्फिडेंट, लुक्स, लैंग्वेज पर कमांड और कुछ खास स्किल्स है, तो वो 21वीं सदी का सफल व्यक्ति माना जाता है। भले ही वो किसी भी मुकाम से मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, अगर उसके पास ये गुण है तो वो मंजिल तक पहुंच ही जाता है। आज के दौर में कामयाबी का मूल मंत्र है व्यक्तित्व विकास। इसके नाम से ही कई लोग लाखों कमा लेते हैं। हर गली मोहल्ले में व्यक्तित्व विकास की क्लासों का बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है कि आप आइए और अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारेंगे, इसके लिए आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास कैसे कर सकते हैं, आत्मविश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं, पढ़ने की आदत बनाए, सुनने की आदत डाले, बॉडी लैंग्वेज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चेहरे के हाव भाव पर भी नियंत्रित रखिए, दूसरों को महत्व दीजिए और अपना व्यू जरूर दें, इंटरेस्ट डेवलप करें, नकारात्मक से बचें। साथियों नकारात्मक जो शब्द होता है ये वाकई में वो सारी चीजें देखता है जो हम सोचते हैं, यानी कि अगर हम कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं तो नकारात्मक चीजें भी हमारे पास ही चली आती है, पीछे पीछे चली आती है।

0: और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये घर कर जाती है कि ये आप काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इन सभी चीजों से बचना है, हमें नकारात्मक जो ऊर्जा होती है उससे आपको दूर रहना है और सिर्फ सकारात्मक चीजों को सोचना है, समझना है और करना भी है।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा। और जैसे कि वर्षा ने बताया है कि व्यक्तित्व विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रहती है आत्मविश्वास को बढ़ाएं। दुनिया के आधे काम तो एक शब्द से जुड़े होते हैं। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। आत्मविश्वास की ताकत आपके चेहरे से झलकती है जो आपकी छवि को निखारती है। अगर किसी कारण से आप किन्हीं चीजों से डर भी रहे हैं तो आप कभी उसे अपने चेहरे पर ना आने दें। हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा अपने चेहरे पर निडरता का भाव रखें, ऐसा दिखाएं कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच एक पतली लाइन होती है, उस लाइन को कभी क्रॉस ना करें वरना आपकी छवि बहुत खराब हो जाती है। आत्मविश्वास में कमी है तो एक मौका मिलता है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो मौका बिल्कुल नहीं मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा है मनीष जी आपने, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना वो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं गलत साबित कर देता है। तो आगे हम जहां पर व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं वहां पर पढ़ने की आदत बनाएं, ये बात भी बहुत अहम भाग है इसका और बहुत अहम रोल भी ये निभाती है।
1: जैसे कि पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है और वाक शक्ति बढ़ती है, मतलब भाषा प्रभावशाली होती है। पढ़ने से सामान्य ज्ञान बढ़ता है जिससे आपका प्रभाव सामने वाले पर अच्छा बढ़ता है, साथ ही आपके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। अगर आपका ज्ञान अच्छा होगा तो आपका खुद में आत्मविश्वास महसूस होगा। पढ़ने से इंसान सीखता है और सीखने की किसी भी वस्तु से व्यक्तित्व का विकास होता है, और पढ़ने से व्यक्ति अपडेट भी रहता है, उसे वर्तमान में क्या चल रहा है पता होता है। इससे व्यक्ति की कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, साथ में उसको कई लोगों के बीच नाम भी मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, पढ़ने की आदत दोस्तों ये बहुत अच्छी होती है, लेकिन आजकल जो हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, आज की 21वीं सदी में लोग किताबों से कम, खासतौर से हमारे युवा साथी किताबों से कम मोबाइलों से ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बनानी पड़ेगी और आपको पढ़ने की यानी किताबें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, जिससे आपके पास बहुत सारा ज्ञान का भंडार होगा और आपसे अगर कोई सवाल करता है तो आप उसका तत्कालीन उसका जवाब दे सकते हैं, ताकि आपको याद रहेगा कि ये सवाल मैंने कहीं पढ़ा था और इस सवाल का सही आंसर ये हो सकता है। इसलिए किताबों को अपना दोस्त बनाइए, मोबाइलों को नहीं, क्योंकि मोबाइल एक टाइम के लिए होते हैं, जब आप अकेले होते हैं, आपका समय पास नहीं होता है, तब थोड़ा सा मनोरंजन आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन दोस्त जो है आप अपनी किताबों को ही बनाइए, मोबाइल को बिल्कुल भी नहीं। आगे एक और बात आती है, व्यक्तित्व विकास में हमें सुनने की आदत भी डालना है। दोस्तों, कभी भी हम कहीं जाते हैं या किसी के सामने बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि लोग हमें सुने, यानी कि हम बोलते ही रहते हैं, लेकिन सामने वाला जब बोलना शुरू करता है तो हम उसकी बात को काट देते हैं, हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत आदत होती है। तो हमें क्या करना है, सुनने की आदत डालनी है, सामने वाला क्या बोल रहा है उसे ध्यान पूर्वक से सुने।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि सुनने की आदत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है और व्यक्तित्व के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और यदि किसी आप जगह जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं या नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं तो सुनने की आदत आप डालिएगा, बॉस क्या कह रहा है या आपका जो साथी है वो क्या कह रहा है। आपको पता चला कि आपका साथी आपको अच्छी अच्छी चीजें बता रहा है, ज्ञान दे रहा है और आप अपने ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमें तो ये सब आता है, तो ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व के लिए ठीक नहीं रहती हैं। साथियों, आगे भी हम इस कार्यक्रम में बॉडी लैंग्वेज पर क्या काम करना चाहिए इस पर भी हम चर्चा करेंगे, चेहरे के भाव को कैसे नियंत्रण कर सके इस पर भी महत्वपूर्ण बात बताएंगे, दूसरों को महत्व दें ये भी बहुत जरूरी रहता है, अपना व्यू जरूर दें, इंटरेस्ट डेवलप करें, नकारात्मक सोच से बचें, ये सारी बातों को हम सुनेंगे कुछ देर बाद, यानी सुनते हैं यहाँ पर इस गीत को और गीत के बाद फिर लौटेंगे।

और मैं चली जाती, आप मुझे विदा कर देते, किसी गरीब के साथ में भेज देते, और अगर इसके बावजूद भी दिक्कत थी।

अगर आप होती तो आपके इस आंगन को शोभायमान बढ़ाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित।

0: बात साथियों, एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। और साथियों, हम होंगे कामयाब के अंतर्गत हम जान रहे हैं व्यक्तित्व विकास को लेकर बात कर रहे हैं।
1: तो व्यक्तित्व विकास का अगला पन्ना आता है, यानी अगली बात आती है, वो बॉडी लैंग्वेज पर कैसे काम करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के बोलने उठने बैठने के तरीके से उसके व्यक्तित्व की झलक दिख जाती है। इस दिशा में खुद को जागरूक बनाएं, पहले खुद में झांकें और अपनी गलतियों का अवलोकन करें, फिर उन्हें सुधारें। क्षेत्रीय बोली कई बार आपके बोलने की स्टाइल को प्रभावित करती है। जैसे जो लोग अपने गांव में खड़ी बोली बोलते हैं, उनकी इंग्लिश या हिंदी में उसकी ट्यून आ जाती है, जो कि आपके व्यक्तित्व पर बुरा प्रभाव डालती है। अतः ऐसी कमियों को पहचानें एवं उसको सुधार करें, इससे आपके आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। अपने आप को सीमित दायरे से बाहर निकालना भी व्यक्तित्व विकास का एक हिस्सा है।
0: बिल्कुल साथियों, जैसे कि आप कई बार जानते हैं, आपके खाने का तरीका बदलें, घर में जैसे चाहे वैसे रहें, लेकिन बाहर ध्यान से रखें। जैसे आप होटल गए हैं, सभी ने वेज ऑर्डर किया है, तो आप इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं तो करें। सभी के बीच नॉनवेज ऑर्डर ना करें। अगर सब नॉनवेज खा रहे हैं तो अलग बात है, क्योंकि आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तब आप वेज ऑर्डर कर सकते हैं। खाते वक्त आवाज ना करें, बोले ना, और सभी का भोजन खत्म हो उसका वेट करें, तुरंत हाथ धोकर ना बैठ जाएं। ये सभी पॉइंट डाइनिंग मैनर्स के अंतर्गत आते हैं। इनको सुधार करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा, जिससे आपका विकास होगा। उठने बैठने का तरीका सही रखें, घर में किसी के आने पर खड़े हो जाएं और उनका वेलकम करें, यानी स्वागत करें, ना कि बैठे रहें और अथवा लेटे रहें। कितना भी थके क्यों ना हो, किसी गेस्ट के

0: आने पर उनसे बिना पूछे ना सोएं। कुछ भी खाने से पहले अगर आपके साथ कोई है तो पहले उनसे पूछे। यह सभी बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन यह सभी आपकी छवि को निखारते हैं, आपके व्यक्तित्व विकास में सहायता करते हैं। अपने लुक्स पर भी ध्यान दें, जैसे जो कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं वही पहने। जगह एवं ओकेजन देखकर ही फैशन करें। आपकी हाइट, हेल्थ एवं बॉडी कलर के हिसाब से ही कपड़े पहने। इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है और अगर आपको इन बातों की समझ होगी तो लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे।
1: बिल्कुल सही कहा, ये छोटी छोटी बातें हैं। आपको लग रही होगी कि ये तो बेफुजूली बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके व्यक्तित्व निखारने में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। अगली बात आती है कि आपके चेहरे के भाव को आप नियंत्रण रखें। किसी से भी मुस्कुराकर मिले, भले आपका मूड खराब हो, आप परेशान हो, लेकिन इसका एहसास किसी को ना होने दें। इससे आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, आपको लोग पसंद करते हैं, आपकी तारीफ भी करते हैं। कभी कभी हमें किसी बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो आपके चेहरे पर दिखने लगता है। कोई बात बुरी लगने पर आप हमारे चेहरे पर दिखने लगता है, हाव भाव दिखने लगता है। आपके व्यक्तित्व को गलत तरह से सबके सामने रखते हैं, इसलिए अपने भाव को नियंत्रण करें। एक्सप्रेशन या भाव भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहायक होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने। कई सारे लोग होते हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने भाव को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जो कि उनके लिए और सामने वाले के लिए भी कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित होता है। इसलिए दोस्तों हमें अपनी बॉडी की हर एक चीज पर कंट्रोल होना अति आवश्यक होता है। हमें हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज हमें कहाँ बोलनी है, कौन नहीं बोलनी है, कब हमें गुस्सा करना है, कब गुस्सा नहीं करना है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस व्यक्ति का गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो सकता, वो दुनिया में किसी भी चीज पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इस बात को आप याद रखिए और हमेशा अपने गुस्से को नियंत्रित रखिए।
1: अगली बात आती है कि दूसरों को महत्व दें, क्योंकि यह एक जरूरी पॉइंट भी है। इसे एक उदाहरण से समझें। अगर आपके घर में शादी है जिसमें कई रस्में होती हैं, जैसे कि हल्दी की रस्म होती है, बहुत सारी रस्म होती है वगैरह वगैरह, इन रस्मों में अपनों की जरूरत होती है, जहां आपको हमेशा दूसरों को आगे करना चाहिए। ये नहीं कि आप आगे आ जाए और दूसरों को पीछे रहने दें, नहीं, आपको दूसरों को आगे करना चाहिए। अपने आप को एवं घर के लोगों के अलावा अतिथियों को पहले शामिल करना चाहिए। इससे जैसे फुआ फूफा है, मामा माई भाई और जीजा जीजी है, इनको तो पहले ही आगे कर दो जाके, ना तो परेशान हो जाओगे। तो ये सारी हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि आप अतिथि आपके घर में है तो उनको यदि किसी रस्म में शामिल हो रहे हैं तो उनको सबसे पहले आगे करें। इससे भी आपके व्यक्तित्व सभी की नजरों में अच्छा होता है और ऐसा ही व्यवहार हर जगह होना चाहिए। यह पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। इससे आपको लोग व्यवहारिक समझते हैं, जो कि सामाजिक दृष्टि से बहुत मायने रखता है।
0: बिल्कुल सही कहा मनीष जी आपने, क्योंकि कई सारे ऐसे मौके होते हैं जब हम घर में दोस्तों को, रिश्तेदारों को और कई सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, लेकिन हम खुशी के मारे हम ये भूल जाते हैं कि हमने किसी को इनवाइट भी किया था, और सारी फोटो में या सारी रस्मों में हम अपने ही परिवार के लोग, अपने ही घर के लोगों को शामिल करते हैं। उन लोगों के बारे में हम सोचते भी नहीं है, या फिर यूं कह लीजिए कि कुछ बुजुर्ग हमारे रिलेशन वाले होते हैं, उनको भी हम कहीं ना कहीं साइड में ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अरे वो तो बुजुर्ग हैं, वो क्या समझेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, फीलिंग उन्हें भी होती है, उनको भी लगता है कि भाई हम इतने पुराने हैं, घर के बड़े हैं, रिश्तेदारी में भी बड़े हैं, लेकिन हमें पूछा नहीं है। तो ये आपकी एक पर्सनालिटी को दिखाता है, आपके व्यक्तित्व को दिखाता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। इसलिए हमेशा अपने से पहले अपने जो बुलाए हैं उन लोगों का सम्मान करें, उन लोगों को महत्व दें। अब बारी आती है दोस्तों, अपना व्यू जरूर दें। आपने कई बार अपने पारिवारिक मामले या ऑफिशियल मामलों में ठीक से सुनने के बाद हर बात

0: पर अपना दृष्टिकोण जरूर सामने रखें। बस ऐसा करते वक्त पोलाइट शब्दों का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे, आपकी बात से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। सभी को ध्यान में रखते हुए बात करें। अगर सही शब्द एवं सही तरीके से बात कहेंगे तो किसी के विरोध में कहने पर भी उसे बुरा नहीं लगेगा, अपितु वो आपको समझने की कोशिश करेगा। इसके में बहुत सहायक होते हैं। इनसे आप एक भीड़ से अलग छवि बनाते हैं। तो कभी भी आपको लगे कोई मामला हो रहा है, कोई डिसीजन आपके परिवार में या आपके ऑफिस में या आपकी क्लास में लिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो, तो अपना व्यू आप जरूर दें। आपकी जो भी राय है, जो भी प्रतिक्रिया है, आप उनको जरूर बताएं। क्या होगा, उनको पसंद नहीं आएगा आपका सुझाव, लेकिन सुझाव आपको जरूर देना है, जैसे आप हमारे कार्यक्रम का सुझाव देते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और कुछ बातें और बची हुई हैं, जैसे कि इंटरेस्ट डेवलपमेंट करें, यानी इंटरेस्ट ये जरूरी है, आपकी हॉबी हो। अगर ऐसा नहीं है तो देखें कि आपकी किन बातों में रुचि है, या अपनी रुचि बढ़ाएं, क्योंकि अपने काम के अलावा हमारे पास कोई अलग चीज होनी चाहिए जिसके साथ हम समय बिताएं। इससे आपको खुद को जानने में मदद मिलती है, जिससे आपका विकास भी होता है। और आखिरी बात है, नकारात्मक सोच से आप बचें, क्योंकि किसी भी कार्य के पहले ही उसके नेगेटिव पॉइंट पर बात ना करें। कई बार यह हमारी आदत में आ जाता है और जिससे हमारी छवि बिगड़ती है और हम में भी कॉन्फिडेंस भी की कमी आ जाती है। अगर ऐसे ही भाव मन से आए तो उसको हटाने की कोशिश करें, नहीं तो यह आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी व्यक्तित्व विकास को लेकर जो हमें आपको बतानी थी। हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोता साथी बड़े अच्छी तरीके से इन बातों को ध्यान में रखेंगे, ताकि हम आगे चलकर ये अपना जो व्यक्तित्व विकास की बात करते हैं उसमें हम बिल्कुल सही उतरे, सही मायने में कहें कि आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। तो इसके लिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल मनीष जी, और हमें अब लगता है कि हमारी क्लास यहीं पर खत्म होने वाली है, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें बता दी हैं कि व्यक्तित्व विकास के लिए किन किन बातों का ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है, जो आपके व्यक्तित्व को निखारती है और आपकी एक अलग छवि बनाकर रखती है। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है, कार्यक्रम भी यहीं समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है भाई लोग इस कार्यक्रम से जाने का। तो अब आखिरी में एक बात जो रह गई है वो ये है कि यह कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा है, हमें जरूर फोन के माध्यम से बताएं, इसका सुझाव दें। जैसा कि हमने कार्यक्रम में बताया कि अपना व्यू जरूर दें, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आप अपनी बात को जरूर रखें। तो आप हमें भी इस कार्यक्रम का सुझाव दीजिए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, और बताइए कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा है। जिस साथी में हमारा पता भी है, जिस पर आप पत्र के माध्यम से अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए हमारा पता है
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम उड़सतीगला के पास ओरछा।
0: साथियों, अब हमें दीजिए जाने की अनुमति, यानी आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मनीष को दीजिए जाने की अनुमति।
0: फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए
1: नमस्कार।

नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो। तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात करत हेंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हेंगे कि उनको कैसे सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को। उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी और साथ में जाने की भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था थी कि नहीं। देखो, जिस शादी उनकी हो रही थी उनको उन्हें देखो भी है तो या नहीं देखो तो, क्योंकि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जाते, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाता ही। और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती और फिर देख भी की तो बातें ही अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपनों ने देखो कि जितनी भी कहानी अपनों ने स्त्री में सुनी हैगी उनने कोनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतो ने जिनसे हमारी शादी हो रही थी बस परिवार वाले देखिया या क्योंकि जैसे कि जो मानदान रहेंगे ब्योरे देख आते ही तो लड़की को देखने की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की ये कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से वे आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी। तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगे और पढ़ाई को लेकर भी कितनी सोचती हैंगी ये सब बातें अपन और आज की कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों देर नहीं करा थेंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हें की जुबानी सुन रहेंगे। तो चला थेंगे राधापुर।

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: का नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा, कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहती हैं? क्या करती हैं अम्मा आप?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रही
0: हैं। आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रही
1: हैं? हम कर रहे 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ, 20 साल से।
0: अच्छा, तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपका मायके कहाँ है?
1: हम अम्मा के झांसी में।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी द्वारा गोगन चौराहे डाल के नीचे राज डॉक्टर, आपने सुना होगा, उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा, उन्हीं के नीचे रहते थे। आपके परिवार में कौन कौन?
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, दोनों थे, तीन बहनों थे।
0: अच्छा,

0: हैं पापा?
1: मम्मी पापा होते।
0: अच्छा आपके घर पे क्या काम होते?
1: वहाँ पे वहाँ पे तो चौका वर्तन करते सब कुछ, ज्यादा जमीन नहीं होती, मजदूरी करते और बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा।
1: मेरे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, मेरी अम्मा के लिखा करती।
0: हाँ, सही
1: बात। तो अम्मा ने सबको लगा दो थे, कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समय छोटे।
0: अच्छा 10 रुपया?
1: हाँ 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिला, 10 बच्चा खिला देते उनके।
0: अच्छा।
1: खाना देती थी और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपये 10 रुपये दे देती मेरे।
0: तो मतलब इस तरह से चला
1: था।
0: अच्छा, अगर आप आपकी बचपन की बात करें तो बचपन में और काका काम आपने, पढ़ाई कितने तक करी है आपने?
1: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। तो मैं बचपन में काम तो जैसे आपने बताया हमने काम भी करी, लेकिन उनसे और छोटे जो बचपन होते ही जब मान लो काम कर रही थी उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी है, जब तो खेलते ही खाते।
0: हाँ, तो खेलने की बात हम कर रहे हैं, आपने खेल कौन कौन से खेल?
1: अब खेल का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, तो ये खेल खेलते तो चपट्टा खेल रहा है।
0: चपट्टा
1: सावन का चपेटा कलर।
0: अच्छा,
1: खेल रहा है
0: तो सावन में आप गीत भी गाती है? खेल में गीत ना, गीत सुनाओ।
1: मैं नहीं जाना तो मैंने गीत नहीं था।
0: अच्छा, गीत ही नहीं आते? पहले तो गाती नहीं हो
1: आप? अरे अंगूर लगा तो बड़ा पे से कुछ नहीं आता।
0: इतने बड़ा पन नहीं आपको, लेकिन तो बड़ा पन नहीं लगा
1: आपको?
0: तो कौन सा गीत गाते
1: हैं? सोलो नहीं गाते
0: आप? गाते? अच्छा, आपकी सहेली कौन बनाती?
1: हमारी सहेली अब सब दूर हो गए, अब सहेली उनको जाने कहाँ कर रही थी।
0: तो नाम को
1: कल को अंगूरी ना हो तो कल को पुष्पा ना हो तो ऐसे सबके नाम होते सबके पेटी कल शादी हो गई थी पेटी कई अपने घर से नहीं
0: सर। अब मिलती हूँ आप लोग?
1: हाँ, मिल जाते हैं,
0: मिल जाते हैं, इकट्ठी हो जाते
1: हैं। कभी कभी इकट्ठे हो जाता है, खुशी तो जो से आप लोग माँ की है, आप तो सब बहनों में लगते हो अच्छे लगे।
0: अच्छे लगते हैं। अच्छा अम्मा, जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन सी होती, मतलब पहना तो काका थे, कपड़ा कौन कौन से चलाते थे?
1: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी होती से चड्डी कपड़ा की सिला के पहनते, और फिर आके पहनते, और खड़ा करने मिली तो बिस्कुट पहन लेते, ये पहन लेते, हम तो खड़ा कर गए तो ये पहन लेंगे, ये कह रहा हूँ।
0: मतलब कोई अलग से नहीं
1: है? कोई अलग से नहीं है।
0: अच्छा, तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितने उम्र अभी?
1: हमारी अब मैं तो ध्यान नहीं है, बहन कितने उम्र में हमारी भाई जाती,
0: तो मतलब कसम को अंदाजा हुई है जब आप जाना था शादी के बारे में?
1: नहीं जानते, जब हमारी शादी हो गई
0: बिल्कुल नहीं जानती। अच्छा, जिस आपकी शादी हो रही थी उसको आपने देखा
1: है?
0: पहले से देखा तो
1: है? नहीं नहीं, पहले कहाँ देखने देखते?
0: हाँ,
1: पहले ना कोई मोड़ी देखा तो ना कोई मोड़ा देखा।
0: अच्छा,
1: तो एक से तो आते ही हमारे बाप बताई हम 8-9 साल के था, 9 साल के हम आप पिताजी गुजर गए थे, जब 9 साल की शादी कर रही थी।
0: अच्छा।
1: तो दिन में तो काम कर रखते हमारे मकाई में कई क्या 500 रुपया दे दी मोड़ी के गया करने, बोलू तो मैं 10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले तो 500 रुपये
0: सही बात,
1: फिर मैंने 750 रुपया दे दी मोबाइल।
0: अच्छा,
1: कौन
0: से रुपए में क्या होगा?
1: नहीं सबसे जैसे कछु कछु लेवल में ऐसे फोन में आती है देखे उन लेवल में और ज्यादा दे रहे, जैसे ही तो बिट गया तो फोन दिया और फोन में दे दो पैसा बड़े बड़े सेठ लोग।
0: जब आपकी ब्याह हुआ इसके बाद कितने आपकी ससुराल से नहीं राधनपुर में भाई है? राधनपुर ससुराल है आपकी, तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपके भाई हैंगी, जैसे पहले बनाते मंडप?
1: पहले मंडप तेल लगाओ कर मंडप लगाओ टीका।
0: अच्छा, 3 दिन को ब्याह हो?
1: हाँ, 3 दिन को।
0: तो बारात 3 दिन मिली रही थी?
1: एक दिन 3 दिन मिली रही थी बारात, सफेद लट्टा नहीं जिसे मार्केट से अपन खोलवन और खोलवन पे चला को आंगा को पट्टा।
0: अच्छा,
1: जब तुम लाल काफे बलाइस।
0: अच्छा।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। जैसा कि मित्रों, हमारे किसान साथियों, आपको पता है कि खेत खलिहान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। और समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से कर सकते हैं, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जान बैठा के हमारे विजय जी को पूछा हुआ था। और विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सैलसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भैया, आज भी जो प्रतियोगी फसलों में लगने वाले जो कवकजनक रोग है उन पर चर्चा करेंगे, तो उनके बारे में, उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रबी वर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं उनमें मधुरमिलासिता, चूर्णिलासिता तथा उपका, यह जिसे निलानी रोग कहते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण, यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोग मधु रोमिल आसिता की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है, और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो इस तरह का जो मौसम होता है, इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है। और रोग का संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के एक माह बाद ही हो जाता है, और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है, और 30 से 70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मधुमिलासिता का विशेष प्रभाव, वैसे तो कद्दू वर्गीय फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है, लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
0: मैं एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर अगर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें, मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं, उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
1: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान, तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोग जनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं, या फिर उन फसलों के बीजों में, जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का अध्ययन कर लें और जो हमारे बीज है उनको उपचारित कर लें, तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें, तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें, क्योंकि उन पर ही जो है रोगजनक, यानी कि उन पर रहते हैं, तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा रोग फैलने का। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल, जो अगर कद्दू वर्गीय की बात करें तो कद्दू वर्गीय की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है, तो कौन कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, और रोकथाम के लिए अगर बात करें

0: क्या उनको उपाय करना चाहिए?
1: वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग है ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें प्रमुख रोग मैंने आपको तीन बताई है, मधुरोमलासिता, चूर्णलासिता, उत्तक या ग्रानी रोग।
0: जी
1: तो ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ।
0: जी हाँ
1: तो सबसे पहला जो रोग है मधुरोमलासिता, जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम, तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं, जो कि जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहाँ शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते हैं, तो वहां से ये थोड़े से मर जाते हैं। तो ये धब्बे जो है वहाँ जिस जगह शिरा पाई जाती है वहां पे कोणीय हो जाते हैं थोड़े से, और इन
0: जी
1: धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जाली नुमा बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है, और संक्रमित पत्तियां जो होती हैं फिर जल्दी भूई होकर सिकुड़ जाती हैं और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है, विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती हैं। अगर संक्रमण उग्र रूप में होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा विरूपित हो जाते हैं, यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो
0: जी मैम
1: इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए
0: जी मैम
1: और आगे की बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या अवांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए।
0: जी
1: और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू वगैरह फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए।
0: अच्छा
1: इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारण हो गए ये बिना किसी खर्च के हो गए, और अगर हम बात करें रासायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है
0: जी मैम
1: और फसल खड़ी है तो फिर उसको जो है नियंत्रित करना जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोवेट 0.25%
0: जी
1: और इसे क्या करते हैं 2.25 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर रोग गंभीर अवस्था में, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में हो, तो मेटानेक्सिल और मैनकोवेट
0: जी
1: इसका जो है इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और इसकी मात्रा जो होती है 2.5 ग्राम
0: जी
1: मेटानेक्सिल और मैनकोवेट को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
0: जी मैम यही मैम अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो शुरुआत
1: जी
0: में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को लगाते हैं, उस समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को और खास तौर पर अगर महिलाओं की मैम बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में जब सब्जियां लगाएं तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए।
1: बीज उपचार देखिए आजकल मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें।
0: यस
1: तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है और जो आपके मेडिसिनल प्लांट हैं इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं, इनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें, तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, कम को उनकी लागत भी कम होती है और इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
0: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका ध्यान रखना चाहिए। और अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती हैं जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर बात करें तो पानी की किल्लत अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है, तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो।
2: साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ। इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारे जो विषय विशेषज्ञ है मैडम, उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।

0: जहाँ तक खाने की बात है तो देखिए, इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय फसलों में, आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो
1: जी भाई,
0: इनकी कृपा हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई इस तरह की और करेला इस तरह की सब्जियों को लगाएं, शेप
1: बिल्कुल मैम,
0: करें।
1: जी मैम। और दूसरी अगर बात करें मैम, टमाटर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन कुछ
0: जी
1: दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन अपने क्षेत्र में कम पैदावार होता है। तो क्या कारण हो रहा है कि ये सब्जियों में गिरावट देखने को मिल रही है?
0: जैसा कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एक फार्म है तो वहाँ पे बच्चे टमाटर लगाते हैं, तो मैंने ये प्रायोगिक रूप से देखा है। तो वहाँ शुरुआती जब टमाटर शुरुआत में आता है, मतलब आरंभिक अवस्था होती है, तो उसमें एक रोग लगता है, वो है अगेती झुलसा रोग। और उसके बाद जब टमाटर जो है वो तैयार हो जाता है तो उसमें पछेती झुलसा रोग आ जाता है। तो ये दोनों रोग जो होते हैं वो टमाटर की क्वालिटी को तो खराब करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसको भी खाली डाल देते हैं। तो इन दोनों रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करे तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है।
1: तो मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना
0: जी
1: चाहिए इस
0: जी
1: बात
0: शुरुआत
1: को।
0: से, किसान को शुरुआत से अगर ध्यान देगा
1: जी
0: तो उसकी रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी, और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा
1: हाँ
0: तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और
1: जी
0: इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेट ये है, मतलब विकल्प ये है कि
1: जी
0: किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए, और रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए, वैरायटी
1: अच्छा
0: को बदल बदल के लगाए। क्योंकि क्या होता है, जो रोगजनक होता है,
1: जी
0: जैसे आपने देखा होगा मनुष्यों में जो रोग होते हैं, तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं, तो
1: जी
0: डॉक्टर की जो बताया वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है, चेंज कर
1: बिल्कुल
0: देता है। तो इसी
1: बिल्कुल
0: तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वैरायटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोग जनक है, जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है, वो तोड़ नहीं पाता है,
1: जी मैम,
0: वो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है ना। जब लगातार एक ही रोग जनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है, वही रोग जनक और वही रोग आ रहा है, तो और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वैरायटी लगा रहे हैं, तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप उसको बदल बदल भी लगाएंगे ना तो रोग जनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा
1: मैम
0: उतना।
1: इसका ये कारण मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं हैं, आप एक्सपर्ट
0: जी,
1: हैं। जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, तो इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है मैम?
0: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण

0: यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये
1: जी
0: रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए, वो मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो
1: बिल्कुल
0: इसलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें, इसकी जगह से जो विकल्प हैं उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
1: जी जी
0: जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी। और जब खेत बैरन पड़े रहते हैं ना, यानी कि खाली पड़े रहते हैं, तो उस समय जो है अगर ढींचा लगवा दिया जाए खेत
1: जी
0: में तो
1: जी
0: उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर कर रही है मिट्टी।
1: मैम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर
0: जी
1: अगर
0: जी
1: देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर
0: जी
1: खरबूज और तरबूज की
0: जी
1: पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज देखा जाए तो ये 90 मतलब 100 में से 10% ही बचा है कि खरबूज और तरबूज लोग उगाते हैं। तो क्या कारण हुआ कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है ये सब्जियां, मतलब ये।
0: अब ये बरुआ सागर का जो टेक्सचर है, मिट्टी का नमूना है, एक तो इसकी जांच करवानी पड़ेगी कि
1: जी
0: भाई मिट्टी में क्या उत्पादकता में फर्टिलिटी में कमी आई है।
1: जी
0: दूसरी चीज ये है वहाँ रोग, कुछ ऐसे रोग होंगे जो हर साल कोई रोग अगर कम मात्रा में आता है और किसान ध्यान नहीं देता है तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है, फिर उसके अगले साल उससे ज्यादा मात्रा में आता है। तो हो सकता है वहां जो रोग आ रहा हो वो प्रबल हो गया हो जो उसकी
1: अच्छा
0: पैदावार को कम कर रहा है। और
1: जी
0: एक नो डाउट अब हमारे यहाँ पानी की कमी तो है ही, क्योंकि
1: जी मैम
0: खरबूज खरबूज ये वाली फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और अगर पानी की कमी है तो फिर किसान इन फसलों को लगाना भी छोड़ देता है,
1: जी
0: कम कर देता है या लगाना छोड़ देता है। तो
1: जी मैम
0: ये सारे कारण हो सकते हैं
1: जी मैम
0: सबके।
1: जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन हम आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कल एक सवाल आया हुआ था, मतलब ये हम जब लाइव कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय एक हमारे श्रोता साथी ने एक सवाल पूछ लिया था, वो सवाल हमारे मन में कल से ही गूंज रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे मतलब पूछा जाए वो सवाल को। सवाल ये था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर देखा जाए तो महिलाओं का पर इनका ज्यादा असर देखने को और सुनने को मिलता है। अगर हम बाल विवाह की इसमें बात करें, तो जलवायु परिवर्तन और बाल विवाह इसको अगर जोड़ा जाए, देखा जाए, क्योंकि एक दूसरे से ये मतलब जुड़े रहते हैं, आपका क्या मानना है कि क्या कारण है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर महिलाओं की और खास तौर पर जो बाल विवाह देखने को और सुनने को मिलता है, उसके बारे में मैम आपका क्या ख्याल है मैम?
0: देखिए, जलवायु परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, स्वयं हैं,
1: जी
0: क्योंकि हम लोगों ने ना पर्यावरण को सुरक्षित करने के तो उपाय नहीं किए हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने की सारी कसर, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है,
1: जी मैम
0: तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और जहां तक बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन की बात है तो उसमें ये जो है ना कि अब मैच्योरिटी लड़कियों में जल्दी हो जाती है,
1: जी
0: क्योंकि
1: मैम
0: हम लोग जो है हमारा खान पान ऐसा है कि
1: जी मैम
0: हमारे यहाँ जो है लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है।
1: जी
0: दूसरे
1: मैम
0: हमारे हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जहाँ माहौल जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ शिक्षा की कमी है,
1: जी
0: क्योंकि
1: मैम
0: जहाँ शिक्षा की कमी है वहीं बाल विवाह होते हैं,
1: बिल्कुल मैम
0: और
1: बिल्कुल
0: जहाँ शिक्षित हैं लोग वो इस चीज को समझते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है एक तरह से हमारे यहाँ,
1: जी मैम
0: और इस कुप्रथा को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। तो
1: जी मैम
0: लोग जो है वो अगर लोग शिक्षित हो जाए और हमारे पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए तो
1: जी मैम
0: पर्यावरण भी सुधर जाएगा
1: जी
0: और साथ ही साथ ये बाल विवाह भी जो है वो भी दूर
1: और
0: जाएंगे।
1: कहीं ना
0: इसका
1: कहीं
0: जो है
1: हमने भी
0: इसका
1: मैम
0: एक और
1: जी मैम
0: विकल्प यही है कि शिक्षा,
1: जी बिल्कुल
0: आप
1: आपने सही
0: शिक्षित
1: बात
0: हो
1: कही
0: और
1: कि
0: दूसरों
1: शिक्षा
0: को
1: एक
0: शिक्षित
1: ऐसा विकल्प
0: करें।
1: है जिसको हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए। समस्या यहाँ पर
0: जब आप
1: मैम ये
0: शिक्षित
1: आती
0: होंगे,
1: जी
0: जी, अब आप शिक्षित होंगे तभी आप
1: हाँ
0: पर्यावरण को भी बहुत अच्छे से समझ
1: बिल्कुल
0: पाएंगे
1: मैम
0: कि
1: बिल्कुल मैम
0: पर्यावरण को हमें अपने कैसे बचाना है, क्या क्या
1: बिल्कुल
0: हम काम करें, हम वाटर सेविंग करें
1: जी मैम
0: और हम ऐसे

0: जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो अपने दूध ले जाकर बस्ती से लगाएं और जंगलों को ना काटें, जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो उसी इन सब चीजों से हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित हो सकता है।
1: कहीं ना कहीं मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब ये चूंकि हम तो एक्सपर्ट है नहीं, आप उसको वाली बात ही जानती हैं, कहीं ना कहीं मैम जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, कहीं कहीं बर्बादी मतलब जाना किसानों की नुकसान हुआ है, जिस कारण से वो लोग क्या करते हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बच्चियों को वहां पर कहाँ ले जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह करने के लिए। तो आपका क्या मानना है मैम इस विषय को लेकर?
0: जी, ये बात तो सही है कि मुझे याद है ये 2005 to 2007 की बात है
1: जी
0: कि
1: मैम
0: हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ना 2005 से लेकर 2007 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, तो किसान की पूरी खेती जो है वो बहुत ही कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। उस समय बहुत सारे किसानों ने, मजदूरों ने जो है वो पलायन कर दिया था दिल्ली की तरफ,
1: जी मैम
0: दिल्ली की तरफ ही आसपास के जो बड़े क्षेत्र है वहां मजदूरी करने के लिए पलायन कर लिया था।
1: जी मैम
0: तो अब उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि दूसरे शहर में अगर पलायन करने जाता है बंदा तो वो कमाने के लिए जाता है।
1: जी
0: अब वो कमाने के लिए वहां जाएगा तो बड़े शहर का खर्चा भी ज्यादा होता है, तो वो सोचता है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी, जो लड़की या जो शादी करना है वो
1: जी मैम
0: शादी करके और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा और हम पाँव जो कमाएंगे वो परिवार को दे जाएंगे। तो
1: जी मैम जी
0: लेकिन ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं तो
1: जी मैम
0: जलवायु में भी चेंज आएगा। आप देखिए जिस टाइम कोरोना था तो कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे, कोई
1: जी मैम
0: भी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो वाहनों की वजह से जो पर्यावरण हमारा संदूषित हो रहा था वो एकदम साफ हो गया था, बिल्कुल
1: बिल्कुल मैम जी मैम
0: साफ हो गया था। तो उस समय जो है मतलब हवा भी बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि हवा को मिलना नहीं चाह रहा था,
1: जी मैम
0: लेकिन हवा जो है बहुत जो प्रदूषित थी वो भी साफ हो गई थी। दिल्ली में भी जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि उनका
1: जी
0: खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है। तो
1: जी मैम इसका मैम बस लास्ट इसका सवाल रहेगा हमारा कि इसका समाधान मैम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए इसको?
0: इसको रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं तो शहरी लोग अलग अलग वाहनों से सफर करते हैं, तो बड़े शहरों में तो आजकल ये चल ही रहा है कि आपने सुना होगा कार पूल करते हैं, तो लोग जैसे जिनको एक जगह जाना है वो एक ही वाहन से जाएं, दो चार लोग एक ही वाहन से जाएं, पानी को कम वेस्ट करें,
1: जी मैम
0: जल संरक्षण करें
1: जी मैम
0: और ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके,
1: जी मैम
0: उसे हम बिल्डअप करें ना कि उसे और बर्बाद
1: मैम आपने समय
0: करें।
1: दिया है इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि मैम आपने इतने कम समय में बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोता साथियों के जो मन में सवाल चल रहे थे उसका मैम आपने समाधान किया है। इसके लिए मैम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे।
0: धन्यवाद,
1: जी थैंक यू मैम।
0: उन्होंने मुझे सुना और उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी जिससे वो फायदा उठा सके अपना कर। जी धन्यवाद।
1: जी थैंक यू। साथियों इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत खलिहान कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49। इस नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन विधा कछियाई गीतन को और इनको आनंद लहें। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। तो दोस्तों, दिन न करत भाई अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और सुनत है भोले राम कुशवाहाजी के स्वर में इन कछियाई भजनन को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो अब आओ सुनत है भजन को।

एक डार पे तीन डरे झूला और चीनो सखी अपने दूल्हा। देखो दोस्तों, अपन सब जन ने जो भजन सुनो है, ई भजन में अपन ने सुनो है भोले राम कुशवाहा जी के गाय भाई भजन खो। अब आओ सुनते हैं फिर से इन्हीं के गाय भाई भजन खो। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

जा बिजनार सतावे के मैया मोई जा बिजनार सतावे। अब आओ आगे सुनत हैं कि जीवन नैया भूला नाथ हमारे। देखो कितना प्यारा भजन अपन अब आगे सुनवे को जा रहे हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

मोरी नैया पार लगा दो भोले बाबा लहरी। देखो कितना प्यारा जो भजन सुनो है, इको आनंद लाओ। आप दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनते हैं गंगाराम भैया जी के गायब है स्वर में एक कछिया भजन को, कि मथुरा से दूती आई रे सभा के बीच में। आओ सुनते हैं गीत को।

की जगत ना को जा।

मोहन बैठ कदम की डाली मुरलिया मधुर बजा मेरे। देखो भैया, गंगाराम भैया ने बहुत ही अच्छी तरीका से ये गीत को गा के सुनाओ है। अब ये गीत के संगे संगे फिर से सुने थे अपन भैया भोलेराम कुशवाहा जी के गायब है गीत को।

अटरिया कैसे चढ़ो लाला अबे उम्र मोरी बारी। देखो कितनों प्यार जो कछिया भजन भैया भोले राम कुशवाहा जी ने गा के सुनाओ है, इमे अपन सब जन ने सुनो है, ये और इको आनंद लो जो गारी की तर्ज में भैया जी ने गाओ है। अब एक संगे संगे आज के कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दिन जी को जाबे को समय हो रहा है, सो अपने दोस्त माता दिन जी को तो दो ही कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात यही कार्यक्रम में यही बेरा पे जब तक के लाने।

जब श्री कृष्ण भगवान नहीं मिले तो देखो गोपियों ने क्या कार्यक्रम किया।

0: जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा के लिए चले गए तो गोपियां बोली श्री कृष्ण भगवान से,
1: आप कुल जन मेरे से बचाते रहे, ये आप कुल जन मेरे से बचाते रहे नाचते।

अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है। हम पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगन प्रसन्न हुई है देवी। और कहना

0: चांद तू इतना मत चमक, ए चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है, लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात भरी जिंदगी हम किया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स याद नहीं होता, हर शख्स याद नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना साथ फेरों में प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आज कल ऐसे होने लगे, बताए कैसे? यार मोहब्बत मत करना, यार मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यार मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: बाबा संतली कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना, कल तलक तुम्हारी थी, कल तलक तुम्हारी

श्रोताओं नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनाई में बारे हमारे सब श्रोता साथी इनको आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा के दो हाथ जोड़ के नमस्कार और राम राम पहुंच जावे। और श्रोताओं देखो अपना समय हो चलो है गो अपने कार्यक्रम हेलो फरमाइश को,

0: तो जैसे ही हम फोन पे आउट हैंगे और वैसे ही हमारे श्रोता साथियन के फोन आवो शुरू हो जाऊ थेंगे। तो फोन अपने बीच में पहलो की को आ रहा है गो अपन और बात करते थेंगे। हेलो नमस्कार।
1: हेलो नमस्कार।
0: नमस्कार जी। नमस्कार को बोल रहे
1: आपका वही पुराना जान पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मंगला से राधे राधे जय श्री राधे।
0: राधे राधे जय श्री राधे। शारदा प्रसाद जी बहुत बढ़िया, आप कैसे हैंगे?
1: बहुत अच्छे हैंगे। आपका श्रीपाल भक्ति बिहारी कृपा से सब घर परिवार में आनंद से है, रेडियो सुन रहे हैं। क्या मस्त मस्त आपने बुंदेलखंड ओछा से बुंदेली लोग गीत सुना रहे हैं, बहुत अच्छा लगा सुनकर आनंद आ रही है।
0: बहुत बढ़िया। तो शारदा प्रसाद जी आवाज आ रही है अच्छी तरह से? हेलो, आपकी आवाज हम तक ठीक नहीं आ पा रही शारदा प्रसाद जी। हेलो हेलो हेलो शारदा प्रसाद जी, आप गाना बजा लीजिए क्योंकि आपकी आवाज बीच बीच में जा रही है। हेलो शारदा प्रसाद जी, आप दोबारा से फोन करिएगा काट के, क्योंकि आपकी बिल्कुल भी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। तो साथियों, हमारे शारदा प्रसाद जी जो मथुरा से बात कर रहे थे, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी, और देखिए उनका फिर से फोन आ गया है, तो हम फिर से बात करने की कोशिश करते हैं।
1: हेलो बहन, प्रणाम।
0: अरे नमस्कार नमस्कार, प्रणाम
1: ये तो बड़े संयोग की बात है कि हमारे मित्र शारदा प्रसाद जी आते हैं तो तुरंत बैक टू बैक आ जाती है,
0: लेकिन आज उनकी फरमाइश नहीं हो पाई।
1: क्यों?
0: अरे उनकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी, तो हमने उनसे कही कि दोबारा से फोन करिए, उनने काटो है और आपको फोन आ गया।
1: हम तो सुन रहे थे, हम जब वो आ रहे हैं तो उनके पीछे हम लग जाते रहे।
0: चलो बहुत बढ़िया, तो अपना परिचय देते भय और अपन आगे बढ़ाते हैं।
1: जी भाई
0: जी,
1: राजू यादव ग्राम प्रहिका श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड।
0: जी, तो बुंदेलखंड से हमारे राजू भैया जुड़ चुके हैं हमारे संग, और राजू भैया हमें लगा था आप खुले मैदान में बगीचा में बैठे हैं। हमें लगा
1: बगीचा में बैठे हैं लेकिन मौसम ठंडा है।
0: अरे गजब की बात है, जा तो बड़ी उम्दा बात सुनने को मिल गई हमें कि ऐसे नौ तपन में आपको ठंडो मौसम मिल गयो।
1: ठंडा मौसम ये है कि बगीचा में पड़े हैं तो ठंडा मौसम तो रहे।
0: बिल्कुल सही बात है, क्या बगीचा में पानी डरत रहते है समय समय पर, और पेड़े भी लगे रहते हैं, इसी वजह से ठंडा को तो बनी रहेगी। अब देखो तनक से बगीचा लगाया मैं, कितनी ठंडक आपको मिल रही है। सोचो अगर सब जगह अपनी धरती पे पेड़ होते तो अपन को कितनी ठंडक मिलती, जो नौ तपन में तपने ना आ तो।
1: बहन अगर ये पेड़ ना होते तो हमें आज यहाँ इस छांव में ना बैठे होते।
0: बिल्कुल सही बात कही हैगी। तो फिर बताओ शारदा प्रसाद जी, आप पहले हमें फरमाइश बता दो, उसके बाद हम आपके दो शब्द जरूर सुनेंगे, काहे के बिलाद ना हो गए।
1: बहना तो बहना जी, अब वो सुना दी दे, पूरब से चली पुरवाई छम छम पायल बोली।
0: पूरब से चली पुरवाई,
1: हाँ जी छम छम पायल बोली।
0: आप अपनी दो जी? शब्द
1: दो शब्द तो बिल्कुल हम तैयार ही रखते हैं, कभी कभी क्या होते हैं आप व्यस्त होते हैं तब चाह नहीं कहने, तो हम तो बिल्कुल तैयार रखते हैं।
0: अरे बिल्कुल, हम कहे अभी आ नहीं पाए थे पिछले सोमवार को,
1: हम ये नहीं दो कार्यक्रम हमारे मिस हो गए क्योंकि हम थोड़ा व्यस्त रहे, और अभी वहाँ सिमरिया दाई बांदा की है वहाँ गंगा स्नान करने गए थे अभी।
0: अरे गंगा दशहरा,
1: फिर महोबा बुंदेलखंड चंद्रका देवी में स्नान किया, फिर चरखारी की जो देवी है मदारण देवी वहाँ स्नान ध्यान किया।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा बात रही और बहुत अच्छी बात है।
1: सोमवार की सोमवार को ही गए थे हम।
0: बताओ फिर अपने दो शब्द बोल दो, आपको गाना दो।
1: जी जी जी जी जी, उद्घोषक वाणी में अमृत बोलते हैं, तभी तो इतना मीठा बोलते हैं।
0: अच्छा।
1: मानो बातों बातों में ज्ञान मिलता है हमें, उद्घोषक ज्ञान को पूरा तौलते हैं।
0: अच्छा।
1: उद्घोषक सबकी इज्जत करते हैं, उद्घोषक मनोरंजन का दरवाजा खोलते।
0: क्या बात है,
1: बस हो गई मैंने बहना जी।
0: अच्छा हो गई। हम सोच रहे थे अभी आप और क्या विवाह होगी।
1: कल बुरा था आज भी, कल बुरा था आज अच्छा जाएगा। वक्त ही तो है,
0: निकल जाएगा
1: जो है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद निकल जाएगा।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया राजू भैया। और अब अपन चलत हैंगे आपके गाना की ओर।
1: पूरा प्रणाम नमस्कार हमारे आदरणीय सम्मानित श्री शारदा प्रसाद मथुरा वृंदावन जी को भी सादर प्रणाम नमस्कार करते हैं।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे जुड़ने के लिए। और सुनते हैं आपकी पसंद को जो प्यारा सो गीत।
1: जी बहना जी प्रणाम नमस्कार।

0: हाँ नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और हमारे संग शारदा प्रसाद जी एक बार फिर से जुड़ गए हैंगे। शारदा प्रसाद जी नमस्कार।
1: नमस्कार
0: नमस्कार। हमें लगता ही कछुआ आज नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई आपके, तो आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही, लेकिन आ तो रही, मतलब अब ठीक से नहीं आ रही।
1: चलो कोई बात नहीं है, हमें समझ आ रही है।
0: हेलो, आप फरमाइश कर दो ताकि फिर से फोन ना कट जावे। हेलो
1: जी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो चौटाली प्रसाद प्रजापति मसाल प्रदेश वार्तालाप कर रहा हूँ रेडियो साहब
0: जी। जी शारदा प्रसाद जी, आपका परिचय पहले भी हम सबने सुन लिया था, एक बार फिर से सुन लिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप हमें फरमाइश बता दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज अभी भी ठीक नहीं आ रही है।
1: जी मैं आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है सूरज और राफी साहब ने गीत गाया है समझ आता है।
0: आप एक बार फिर से गीत दोहराएंगे?
1: हमें तो इतना है प्यार हमसे,
0: इतना है प्यार हमको,
1: इतना है तुमसे प्यार मुझे, इतना है तुमसे प्यार मुझे। फिल्म का नाम सूरज, रफी साहब ने गीत को गाया है।
0: तुमसे प्यार मुझे मेरा राजदार है ना,
1: इतना है तुमसे प्यार मुझे, मेरे राजदार,
0: मेरा राजदार। बिल्कुल सूरज मूवी का ये गीत है।
1: जी जी
0: जी बिल्कुल। तो शारदा प्रसाद जी, आज कुछ गड़बड़ी हो गई है, हमें लगता है आपके टावरों में आपका आवाज जो है वो ठीक से नहीं पहुंच पा रहा है हम तक।
1: मेरी समय में तो आ रही है पूरी बातचीत अच्छे से हमें, और
0: आ रही है, लेकिन आपकी आवाज हमें कानों में बहुत कम आ रही है और कभी कभी तो बीच में चली भी जा रही है।
1: अच्छा अच्छा, कुछ हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। और ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आदरणीय वर्षा दीदी के साथ साथ मैं याद करना चाहता हूँ अविनाश जी, लोकन वर्मा, राजू यादव, इन सभी दोस्तों के साथ में बुंदेलखंड वर्षा सुन रहे सभी श्रोताओं को सर्व समर्पित रहेगा।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। आइए सुनते हैं आपके पसंद का ये प्यारा सा गीत।
1: हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, सादर नमस्कार।

0: बताओ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम हेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहन सिंह ठाकुर जी। हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: अरे नमस्कार मोहन जी, नमस्कार, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है। महाराष्ट्र हिंगोली जिला कलमगुरी तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात कर रहे हैं मैडम जी।
0: जी बिल्कुल करिए, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमसे बात करते हैं, आप अपनी भैंसों के साथ हमारा रेडियो सुनते हैं, ये हमें और भी अच्छा
1: लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो खेत में है, भैंसों का नहीं खड़ा है, उधर हमारे भैंसा भी खा रहे है तो एंजॉय कर रहे है, आवाज बड़ा किया है, स्पीकर पे रखा है।
0: बहुत बढ़िया। और बताइए क्या हाल चाल है आपके?
1: बस मैडम जी कुछ नहीं है, खेत में है, जरा इधर ठंडा ठंडा थोड़ा वातावरण है, बदली आ रही है। कल तो 5-6 बजे बारिश हो गई, ज्यादा तो नहीं हो गए मगर कम ज्यादा कभी कभी हो रही है, इधर उधर चालू है।
0: अरे वाह,
1: हाँ जी।
0: चलिए तो बताइए फिर कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। वादा को टूट जाता है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पता है, आप रेडियो सुनते सुनते गाने का भी शौक रखने लगे हैं मोहन जी, पता है?
1: मैडम जी जब मोबाइल पे चलता है गाना तो उनके साथ तो गुनगुना ही लेते हैं, अगर नहीं भी चलता है तो पता नहीं अपने आप वो जीभ हमारी जो जबान है वो चलता रहता है, कौन सा भी गाना बोलते फिर आप हिंदी हो या मराठी हो।
0: अरे नहीं, आप बहुत अच्छा गाने लगे हैं मोहन जी, समझ जाइए।
1: नहीं अपना अपना एक ये होता है मैडम जी, आदमी में बैठ के तो गा नहीं सकते ना, तो बातें कर लेते हैं तो इधर गुनगुनाते हैं थोड़ा टाइम पास ऐसे ही।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
1: वो है ना एक गाना, वो क्या बोलते हैं, गाना आए ना आए गाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ऐसा है ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल, नहाना चाहिए ठंडे पानी से, और गाना अब आ गया है तो गा भी लेना चाहिए।
1: हाँ थैंक यू, धन्यवाद मैडम।
0: मोहन जी हम सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत, मिलेगी तुम।
1: थैंक यू, धन्यवाद।
0: दिल का क्या मशहूर मूवी का, कुमार सानू और आशा भोसले जी की आवाज में।

0: कि तुम कोशिश करना, वादा कभी ना करना, वादा तो टूट जाता है। बिल्कुल सही बात है, तो कोशिश करते रहिए। और आइए हमारे बीच में हमारे एक और साथी जुड़ने जा रहे हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। हेलो, नमस्कार
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते योगेश जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। कैसा चल रहा है गर्मी का माहौल, नौ तपा कैसे चल रहा है?
1: बहुत गर्मी है, घर ही में ज्यादातर रहते हैं।
0: बिल्कुल रहना पड़ेगा, मजबूरी है।
1: जी
0: बिल्कुल, तो बताइए आज के कार्यक्रम में क्या सुनना पसंद करेंगे योगेश जी?
1: फिर मजे से सुनवा देंगे, तेरे नैना बड़े कातिल मारे ही जान लेंगे।
0: तेरे नैना
1: बड़े कातिल मारे
0: क्या बात है। तो और बताइए, आपने भी परिचय नहीं दिया अपना।
1: योगेश जांगड़े, तुम्हें तरह 36 वर्ष से।
0: जी बिल्कुल योगेश जी, और
1: आपको आपको बता भी दें कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हमारा वो जो फोन कॉल करते हैं वो दर्ज हो चुका है।
0: अच्छा,
1: हाँ, आप चाहे उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाइए या फिर गूगल जेमिनी वगैरह से पूछेंगे।

0: सबसे ज्यादा फोन कॉल रेडियो पर किसने किया है तो बता देंगे वहाँ पर।
1: क्या बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो।
0: जी धन्यवाद,
1: बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर योगेश जी, हम सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे।
0: धन्यवाद,
1: नमस्कार।

यहाँ बड़े ही कातिल मार डालेंगे के बाद अब हम चलते हैं एक पुराने गीत की ओर, जो कि है हमारी पसंद का ये गीत बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी। ये प्यारा सा गीत हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं लता जी की आवाज़ में, आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद अजहर खान जी। हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार
0: नमस्कार, कैसे हैं सर?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, जिला विदिशा।
0: अच्छा जी सर, सॉरी हमने आपका नाम थोड़ा सा गड़बड़ ले लिया था, अजहर बोल दिया था, क्योंकि वो ट्रू कलर में आपका सेव होके आ रहा था इसलिए। जी तो बताइए क्या सुनना पसंद करेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: ये फिल्म है अनोखा अंदाज।
0: बिल्कुल अनोखा अंदाज, गाने के बोल।
1: उसमें से कोई सा भी चला देना।
0: उसमें से कोई सा भी?
1: जी चलिए अच्छे हैं
0: जी। और बताइए कुछ अपने यहाँ के हालचाल।
1: बस हाल चाल ठीक है, बैठे हैं घर पर। गर्मी है, गर्मी पड़ रही है, धपट है, हवा है, धूप चल रही है।
0: तो कैसे आप इनसे बचाव कर रहे हैं? बचाव के साधन अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं इस मौसम में, तो कैसे अपना ध्यान रख रहे हैं?
1: देखो घर में तो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी है, प्याज का सेवन कर रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, उससे बचाव करना पड़ रहा है। कूलर की ठंडी हवाएं करना पड़ रही है।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो हम सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हमारे साथ।
1: आवाज कट रही है,
0: आवाज कट रही है, आवाज आ रही है।
1: भाई आवाज सही।
0: तो बोलिए प्रीतम जी।
1: जी जिला झांसी ग्राम अकोनिया से प्रीतम सिंह यादव बात कर रहे।
0: बिल्कुल, हमने तो आपको परिचय पहले ही दे दो, बस आप बहुत हवा चल रही है आपके तरफ।
1: हाँ, हवा बहुत तेज चल रही।
0: तो आप आवाज सही कर लो आप अपने, मतलब
1: अब तो आ रही सही आवाज।

0: प्रीतम जी, हम आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद को जो गीत, और आपके पीछे से बहुत ज्यादा हवा की आवाज आएगी।
1: हाँ, हवा बहुत तेज चल रही है।
0: अच्छा अच्छा, तो सुनवा रहे आपके पसंद को जो गीत, और क्या वो चाहते हैं?
1: हवा तेज चल रही।

0: पड़ती रहे, उससे जो है तो शरीर में पानी की कमी नहीं होगी।
1: तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत, तुमसा कोई प्यारा मासूम नहीं है, और अलका याग्निक की आवाज में खुदा का नबी का, जो कि 1994 में आई हुई थी। नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे अगले साथी जुड़ चुके हैं। हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार भैया, कौन बोल रहे हैं
1: आप? तो पहचान लेती हैं, पहचान जाइए।
0: राजकुमार बोल रहे हैं। तो राजकुमार जी प्रयागराज से या फिर प्रतापपुरा से या फिर अहमदाबाद से, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गुजरात से।
0: गुजरात से, हाँ गुजरात का नाम लेना भूल गए थे। बड़े दिनों बाद याद किया आपने।
1: हाँ दीदी, उधर फोन ही नहीं लगा रहे थे, कुछ काम ऐसा पड़ गया था, टाइम नहीं मिल रहा था।
0: अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं।
1: हाँ तो उधर सोमवार को लगाए लेकिन फोन नहीं रिसीव हुआ, तो उसके बाद लगाए ही नहीं।
0: अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सोमवार को लाइन पे हुआ था, आपने शायद नहीं किया होगा।
1: हाँ दोबारा नहीं लगाए तब।
0: ऐसा होगा, चलिए कोई बात नहीं। तो सोमवार की भी फरमाइश आज कर दीजिए, हम आपकी दोनों फरमाइश पूरी कर देते हैं।
1: अरे दीदी अच्छा है, आपका ही फरमाइश आप पूरे कर दीजिए, वही बहुत है।
0: जी बताइए कौन सा गाना सुनेंगे?
1: गाना हम अपनी पसंद का सुन ले कि आपके पसंद का?
0: नहीं, नहीं, आप देखिए बड़े दिनों बाद आपने कॉल किया है तो आप अपनी पसंद बताइए।
1: ठीक है जी, बता देते हैं।
0: बता दीजिए।
1: वो पुराना गाना है दीदी, मेरा नाम है चमेली।
0: अरे क्या बात है। मेरा नाम है चमेली। आप थोड़ा गा के
1: और बताएं। ठीक है दीदी, और बताएं अपने घर का और अपना अपने शहर का।
0: हमारे शहर में बहुत गर्मी पड़ रही है, 9 तपा चल रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं और लोग अपना ध्यान भी रख रहे हैं, हालांकि क्योंकि हम उनको समय समय पर सारी जानकारी दे रहे हैं। बाकी हमारे श्रोता साथी बहुत मजेदार हैं और हमारे घर परिवार में भी सब बढ़िया है। सबको हम जैसे यहाँ पे बोलते हैं रेडियो में कि कोई भी घर से बाहर ना निकले से लेकर शाम को 5 बजे तक, तो वैसे ही सब लोग घर में भी पालन कर रहे हैं। सब लोग घर के अंदर ही रहते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो घर से बाहर जाते हैं, तो उसमें सुरक्षा के साधन सब इस्तेमाल करते हैं। बस यही कहानी है हमारी।
1: बहुत बहुत अच्छा है दीदी, आप भी अपनी सेफ्टी से रहिए, और यहाँ भी तो गर्मी है दीदी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी सभी जगह है और सब जगह है, लेकिन सावधानी हम सबको रखनी पड़ेगी।
1: हाँ।
0: चलिए तो राजकुमार जी, अब हम देर नहीं करते हैं, हम सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत, मेरा नाम है चमेली, लता मंगेशकर जी की आवाज में।
1: बहुत बहुत बढ़िया।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

हमारे साथ हमारे एक और साथी जुड़ रहे हैं इस कॉल पे, तो हम उनको लाइव लेते हैं और पूछते हैं कि उनकी क्या फरमाइश है, क्योंकि अभी हमारी घड़ी में बज रहे हैं 12:58, यानी सिर्फ 2 मिनट ही हमारे पास बचे हुए हैं और इस 2 मिनट में हमारे श्रोताओं के जो भी कॉल होंगे वो उनकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। सिर्फ एक ही कॉल हम ले सकते हैं, तो उनका फ़ोन कट गया है किसी कारण से, कोई बात नहीं, हम इंतज़ार करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 मिनट हैं अभी। तो अगर इस 2 मिनट में उनका फ़ोन आता है तो हम उनको लाइव ज़रूर लेंगे, और अगर नहीं आ पाता है तो आपको यही गाना हमारी पसंद का सुनना पड़ेगा।

0: बताओ, आइए, हमारे साथी का फोन फिर से आ गया। हेलो, नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो,
0: हेलो, कौन बोल रहे हैं? आवाज पहुंच रही है आप तक?
1: आवाज सही आ रही? रक्षा
0: बताइए रमेश जी, क्या कर रहे हैं?
1: रामगढ़ जिला झांसी से रमेश
0: हाँ
1: चंद्र शर्मा जी।
0: जी रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कहा क्या वो
1: और
0: सा गाना सुना?
1: धन्यवाद। और कव्वाली है वो एक,
0: हाँ
1: राज की बात कहे तो जाने मैं फिल्म में फिर क्या हूँ। सारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो।
0: राज की बात कहे
1: समझ में आई?
0: आपने शुरू बोलो, राज की बात
1: कव्वाली है वो, राज की बात कह दू तो जाने मैं फिल्म में फिर क्या हो। आशा जी और मोहम्मद जी की आवाज में है कव्वाली।
0: हम आपको सुना रहे हैं आपके बच्चों जी के पास कव्वाली, और ये कव्वाली जो है आशा भोसले जी और मोहम्मद रफी जी की आवाज में जी। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार, नमस्कार।

तो श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय जो है बहुत ही निर्धारित होता है। पूरा एक घंटे का समय हमारे श्रोताओं को मिला होता है और वो उस एक घंटे के दरमियान अपनी सारी फरमाइशें पूरी करते हैं और अपने पसंद के गीतों को सुनते हैं। तो आखिरी फरमाइश रमेश चंद्र जी की है, जो कि हम पूरी करने जा रहे हैं। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कॉल करें। हमारे नंबर 9219207749 पर कॉल कर सकते हैं सोमवार और बुधवार के दिन 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। और साथियों, आप तो जानते हैं कि 9 तपा चल रहे हैं, तो इन 9 तपों में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। अगर घर से बाहर आप निकल रहे हैं तो सूती कपड़े पहन के जाएँ और सर ढक के जाएँ। टोपी, छाता या गमछा, तौलिया, इन सब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर लेके जाएं। ख़ासतौर से अपने आस पड़ोस के लोगों को अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो आप उनकी मदद भी ज़रूर करिएगा। और किसी भी तरह की समस्या अगर आपको होती है, कोई समझ में नहीं आ रहा है किसी चीज़ में, तो आप हमें फ़ोन करके भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, हमारा फेसबुक भी है, यूट्यूब भी है और व्हाट्सएप भी है, नंबर भी है। तो सारी सुविधाएँ आपके पास हैं, आप जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए आज के कार्यक्रम हेलो फरमाइश से जाने का इजाज़त। हमारे और आपके फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक आप सभी ऐसे ही सुनते रहें रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो, अपनी बातें। नमस्कार।

0: का महल ऊंचा हो जी निगरानी में
1: कैसे रखें पानी को, कहाँ रखें, क्या उपयोग करें, सुने आप।
0: पानी बुलावे जरा सा तपावो लगा करके ध्यान, पानी बुलावे जरा सा तपावो लगा करके ध्यान, उड़ले करके घटना।

0: बीमारी फैले या ने तन अनेक।
1: अगर हाथ गंदे होंगे बीमारी फैलेगी, पानी में जाएगी गंदगी जाएगी। सुने आप,
0: वो हाथ में ले तो बीमारी फैले अनेक।

0: खंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में।
1: और आजीविका कार्यक्रम में हम अपने श्रोता साथियों के लिए ऐसे व्यवसाय के बारे में बताते हैं जो हमारे श्रोता साथी इन व्यवसायों को कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।
0: अरे लेकिन हम लोग बताना भूल ही गए हैं कि आपके साथ इस समय मौजूद है आपके अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और साथ में है मनीष।
0: और कार्यक्रम आजीविका आप लोग सुन ही रहे हैं और आजीविका कार्यक्रम में हम लोग बात करते हैं अपने आजीविका से जुड़ी हुई बातों को हम लोग करते हैं इस कार्यक्रम में। जैसे कि कोई बैंक की योजना अगर हो या फिर कोई नया व्यवसाय हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, कुल मिलाकर अपनी पूरी आजीविका से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम होता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि हमारे श्रोता साथी सबसे ज्यादा इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन करें, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल गई है इस क्षेत्र में। तो बेरोजगारी को देखते हुए हम अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है कि व्यवसाय को कर सकते हैं, लेकिन मनीष जी अभी अगर कहा जाए हम लोग सोचेंगे नहीं कि किस तरह से हमें एक नया व्यवसाय करना है, उस तरीके से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते और अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो हमें ढूंढना चाहिए। तो देखिए मनीष जी, अभी सुबह की हम अगर बात करें तो सब्जियों की बात जहां तक आती है तो हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है सब्जियों का व्यवसाय।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि हम और आप देखते हैं और इस बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा सब्जी उगाई जाती है। तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आइडिया ये आया है कि हम किस तरीके से सब्जियों का व्यवसाय करके हम अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखते हैं कि यदि हम सब्जी तो एक तरफ होती है, यदि हम दूसरे पद्धति से यानी ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम सब्जियों को उगाएं और उसको पैकिंग कर हम बढ़िया तरीके से उसको बेचें, तो उसमें दाम जो रहते हैं, जो सब्जियां आती हैं उसकी सब्जी और जो ऑर्गेनिक सब्जियां रहती हैं उनके दामों में काफी फर्क रहता है। तो हम भी ऑर्गेनिक पद्धति से

0: यदि हम खेती कर और सब्जियां उगाकर हम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा है मनीष जी आपने, क्योंकि देखिए हमारे किसान साथी यही सोच रहे होंगे कि क्या हम सब्जी का व्यवसाय नहीं करते हैं या फिर खेती नहीं करते हैं। तो ये सही बात है, आप लोग करते हो, बहुत अच्छे तरीके से करते हो, लेकिन अगर ऑर्गेनिक तरीके से आप अगर सब्जियों का व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑर्गेनिक तरीका क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो साथियों ये जो कार्यक्रम है वो हम आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आपको नई नई चीजों से अवगत कराया जाए और नया कार्य आप किस तरह से कर सकते हैं अपने या फिर जीवन शैली कह लीजिए उसको या फिर खेती बाड़ी कह लीजिए, उसमें आप किस तरह से एक नया बदलाव कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं।
0: बिल्कुल वर्षा, और हम कोशिश करते हैं कि हम उन सारी जानकारियों को आपको उपलब्ध कराएं जो आपके लिए बेहद जरूरी हो, क्योंकि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में यदि हम ये तो आपने कहा ऑर्गेनिक पद्धति से खेती कर व्यवसाय कर सकते हैं, दूसरी अगर तरफ देखा जाए तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से उनके चले हुए कार्य से हम यदि अपने काम को करें या अपने व्यवसाय को करें तो जरूर उन्नति होगी, जरूर उस कार्य में हमें जरूर अच्छा मुनाफा होगा यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से करेंगे तो हम। हाँ
1: जी जी बिल्कुल मनीष जी, हम यही कहने वाले थे कि अब हम बात को अपनी यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हैं क्योंकि बहुत बातचीत हो गई है और अब हमारे साथी जो है वो सोच रहे होंगे कि कब हमें इस प्रोग्राम के बारे में सुनाया जाए और आज आप किससे मिलवाने वाले हैं इस विषय में भी बता दीजिए थोड़ा।
0: तो हम चल चलते वहां पर हम पहुंचे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जहां पर शोध होता है, जहां पर पढ़ाया जाता है, किताबों में बताया जाता है कि किस तरीके से हम सब्जियों का व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो जलवायु परिवर्तन को जलवायु को देखते हुए हम कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो मिट्टी के भी फर्क पड़ता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है और किस प्रकार की मिट्टी में हम कौन सी सब्जी उगा सकते हैं। तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से हम व्यवसाय को करें, सब्जियों का व्यवसाय करें, तो हमें जरूर मुनाफा होगा, फायदा होगा। तो हम आपको सीधा हरपाल सिंह जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं प्रोफेसर के पद पर, तो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में लोग सब्जियों का व्यवसाय कर अपनी आजीविका को बढ़ा सकता है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं।

0: सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम गोपाल सिंह है, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में, और मैं पिछले 5 वर्षों से यहाँ पर भी सेवा दे रहा हूँ। मैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सबसे आपको ये सबसे पहले ये सुझाव देना चाहता हूँ कि हम लोग बुंदेलखंड के किसान काफी जो है युवा है और काफी नॉलेज है मतलब यहाँ के किसानों को, क्योंकि मैं भी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन के भरोसा सागर में है, मैं यहाँ पे गया हूँ कई बार किसानों संबोधित करने किसान मतलब सब उसमें। तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि किचन गार्डन भी आप कर सकते हैं। किचन गार्डन में क्या होता है कि आप जो है अपने घर के आसपास जो जगह खाली पड़ी रहती है उसमें हम लोग जो है एक घरेलू स्तर पर सब्जी उगा सकते हैं, जिससे हमें जो एक तरीके से हमें फ्रेश सब्जी खाने में मिलती है और बिना केमिकल के हम जो सब्जी उगा लेते हैं। उसका ये कि हमें उसमें अलग से कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और अलग से कोई पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। घर से निकलने वाला जो पानी होता है वही इसमें इस्तेमाल रहता है, जो किचन से पानी निकलता है
0: जी।
1: और जो है शुद्ध शुद्ध सब्जियां हम जो है उगा सकते हैं
0: जी।
1: और दूसरा इसके साथ ही साथ ये हम क्योंकि बुंदेलखंड की धरती जो है काफी उर्वर है, उपजाऊ है
0: जी,
1: तो यहाँ पे हम सब्जियों की खेती जैसे बैंगन की खेती कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में
0: जी,
1: तो हमने एक वो सा ड्रम हेड वैरायटी है उनका पत्ता गोभी की, इसी से हमारा रिसर्च चल रहा है
0: जी।
1: तो उसपे हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। हमने जो है केमिकल खेती की बजाय हमने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे करने की कोशिश की है और हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा है यहाँ पे जो है, क्योंकि किसान का संबंध पशुओं से होता है
0: जी।
1: तो पशुओं का गोबर मूत्र वगैरह सब जो है बल्कि खाद बनता है, खाद से उस खाद को अगर सीधे सीधा खेत में ले जाए और उसमें खाद को मिट्टी मिला दें तो हमारी जमीन उपजाऊ भी होगी और दूसरा जो उत्पादन होगा वो भी बहुत उमदा होगा, बहुत अच्छा होगा
0: जी।
1: तो हम लोग जो है यहाँ पे जो सब्जियों की खेती करके जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे बैंगन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है और प्याज है
0: जी,
1: और लहसुन है
0: जी,
1: इन सब की खेती करके हम लोग मतलब जल्दी लाभ ले सकते हैं
0: जी।
1: क्योंकि जब हम वैसी खेती करते हैं जैसे गेहूं बाजरा अनाज की खेती करते हैं इसमें बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन सब्जियों में क्या है समय कम लगता है
0: जी,
1: कम मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और जल्दी ही उत्पादन शुरू हो जाता है
0: जी।
1: तो हम इसको बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं अगर हम बड़े किसान हैं, अगर हम छोटे किसान हैं तो छोटे छोटे स्तर पर टुकड़े में जोड़ खेती उगा के और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा सकते हैं। और मैं तो ये सलाह देता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती हमारे लिए हानिकारक नहीं है
0: जी,
1: हमारी भूमि के लिए भी हानिकारक नहीं है
0: जी जी।
1: तो हम लोग को जो है केमिकल खेती छोड़ देनी चाहिए, मतलब मेरा सुझाव है कि केमिकल खेती छोड़ के हम लोग अपनी पुरानी व्यवस्था पे जाएं, जो जैसे पुराने समय में हम लोग जो है ऑर्गेनिक खेती करते रहे हैं, हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज हम फिर हमारा देश हमारा प्रदेश जो है उसी तरफ वापस लौट रहा है कि हम ऑर्गेनिक खेती मतलब जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। और मेरी तरफ से ये सुझाव है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा सब्जी उगा के और जो भी विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी आपको सुझाव चाहिए कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हम उपलब्ध है यहाँ पर
0: जी।
1: और हम अपने बुंदेलखंड के सभी किसानों के लिए पूरा कोशिश करेंगे कि जो भी हमसे मेहनत हो सकेगी हम जो भी जानकारी दे सकते हैं बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकते हैं हम उपलब्ध रहेंगे।
0: हम सर एक चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड में हम देखते हैं कि हमारे बहुत से युवा साथी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, किसानी से खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन समस्या बहुत ज्यादा ये आती है कि वो चाहते हैं कि खेती को किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि आपने सब्जियों का सुझाव दिया है तो हम जानना चाहेंगे कि इस बुंदेलखंड में ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिससे कम लागत लगती है और मुनाफा बहुत अधिक रहता है
1: जी। जी सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फूल गोभी और पत्ता गोभी बैंगन ये सबसे यहाँ अच्छे होने वाली सब्जियां हैं
0: जी।
1: क्योंकि मैं मार्केट में देखता हूँ मतलब जो है मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बैंगन का उत्पादन बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा एडवर्स है, विपरीत कंडीशन है
0: जी।
1: तो उसको ज्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती बैंगन की सब्जी जो होती है। और अपना जो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और जो मिर्च है
0: जी,
1: पालक है और आपका धनिया है, हरा धनिया
0: जी,
1: और तमाम ऐसी सब्जियां हैं जिनको उगाकर हम जो जीवन यापन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये समय में कम लगता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है और समय कम लग रहे हैं, जैसे हमें पता है हमारे किसान जो है इतना भी सक्षम नहीं है कि भाई ये उसने धान लगाया छह महीने बाद आया धान डाले यहाँ नहीं होता है, फिर भी जैसे गेहूँ है तो टाइम टेकिंग है, गन्ना है बहुत टाइम टेकिंग होता है
0: जी।
1: तो इसीलिए सब्जी क्या होती है जल्दी जल्दी उत्पादन देती है, जल्दी जल्दी करने में ईजी रहती है, ज्यादा प्रैक्टिस जो है नहीं करनी पड़ती, ज्यादा कल्चर क्रियाएं जो है जो कृषि क्रियाएं होती है वो नहीं करनी पड़ती, निराई गिराई और बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि साकीय पौधे होते हैं सब्जियां और इसके ऊपर समय समय पर पानी की उपलब्धता होती रहनी चाहिए, जब भी लगता है फ्लावरिंग हो रही है फ्लोटिंग हो रही है तो पानी देता रहना चाहिए। बाकी ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे अपना जो है जल्दी जल्दी पैसे कमा के अपने घर का जीवन यापन कर सकते हैं और जब हम बड़े किसान हैं हम उसको कमर्शलाइज करके मतलब जो व्यवसाय तौर से भी हम उसको उगा के जो लाभ कमा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर हम छोटे स्तर के किसान हैं तो हम लोकल मार्केट का ज्यादा सब्जी का उत्पादन करना चाहिए, जिससे कि हम लोग जिनकी डिमांड कम है क्योंकि यहाँ का जो लेन का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा मीडियम टाइप का है, यहाँ का जो गांव का किसान है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, तो लोकल मार्केट के हिसाब से हमें छोटी छोटी सब्जी उगानी चाहिए छोटे स्तर पर, इसको छोटा किसान भी उगा सकता है और छोटी सी मार्केट में बिक भी जाता है। और जो हमारे बड़े किसान है वो लोग जो है मार्केट गार्डन कर सकते हैं, जो मार्केट के आधार पर खेती की जाती है उसको मार्केट गार्डन कहते हैं या ट्रक गार्डन कहते हैं, जो डिस्टेंट मार्केट के लिए एक बड़े विभाग पर जो हम खेती करते हैं वो जो है वो दूर दूर दराज के क्षेत्रों के लिए होता है, जैसे हम यहाँ से दिल्ली हम दिन में देखते हैं कि चना भी बहुत जाता है
0: जी
1: दिल्ली
0: जी
1: हरा चना
0: जी,
1: तो चने खेती करके भी हम लोग जो है काफी लाभ कमा सकते हैं क्योंकि चना जो है कम पानी चलाने वाली सब्जी है, सब्जी मान लीजिए
0: जी हमारे
1: साल भर
0: बिल्कुल सर,
1: तो आप ये यहाँ से चना उगाते रहे यहाँ से दूर मार्केट के लिए जो है यहाँ से सीधा सीधा सब्जी का उत्पादन करके उसको वहाँ बेच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है
0: जी। यहाँ पर सर अगर मौसम की बात करें, चूंकि मौसम परिवर्तन होता रहता है तो हम ये देखते हैं कि काफी सब्जियां उगाने वाले भी परेशान हो जाते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो अपनी सब्जियों को एक वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन करके अपने आय को बढ़ा सकता है।
1: जी जी सर, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम कोई भी खेती करने जाए उससे पहले हमें अपनी भूमि की जांच करा लेनी चाहिए, अपनी सोयल की टेस्टिंग करा लेनी चाहिए, उसके

0: पोषक तत्व कमी है उसको जांच करा के उसके बाद ही जो है उसमें कोई भी अगर हम रासायनिक खाद उसमें दे रहे हैं तो वो विष की मात्रा के आधार पर देना चाहिए, और अगर ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो वो ज्यादा लाभदायक है, और वो उससे क्या होगा कि वो एट द टाइम ऑफ सोइंग
1: जी
0: एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फील्ड मतलब भूमि की तैयारी करने के समय हम उसमें जो खाद डालते हैं देसी खाद
1: जी,
0: और उसके बाद हमें जो है साइंटिफिक सीड लेना चाहिए, वैज्ञानिक बीज लेना चाहिए, मतलब किसी रजिस्टर्ड संस्था में
1: लेना चाहिए
0: जी, कोई ऐसा बीज नहीं लेना चाहिए कहीं से भी ऐसे किसान से ले लिया उसने उगा दिया
1: जी,
0: हमें हमेशा एक रजिस्टर्ड संस्था से जहां से वो जो बीज के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है फर्म्स तो हमें वहां से बीज लेना चाहिए, और उसको सही वैज्ञानिक तरीके से हमें जो है उसकी जुताई करके उसका जो प्लांटिंग सिस्टम हो जो भी इरीगेशन सिस्टम हो उसको फॉलो करना चाहिए, और मैं सलाह देता हूँ कि स्प्रिंकलर जो मेथड ऑफ इरीगेशन है उसको ज्यादा फॉलो करना चाहिए, या फिर ड्रिप इरीगेशन जो है जो बूंदी सिंचाई होती है
1: जी
0: सब्जियों में उसको भी उत्पादन मतलब उसको
1: चाहिए
0: लगा के उसको कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। दूसरी बात यह कि पानी की यहाँ कमी है
1: जी,
0: तो हमें जो है जो बौछारी सिंचाई है या हमारी बूंदी सिंचाई है वो उसको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बुंदेलखंड में यहाँ पानी इस बार बहुत गिरा है, लेकिन पहली बार चार सालों में पांच सालों में बहुत कम पानी
1: जी,
0: तो ऐसे केस में सब्जियां उगाना बहुत डिफिकल्ट होता है, हार्ड होता है
1: जी,
0: तो ऐसे केस में ऐसी सब्जियां उगाना चाहिए जो कम पानी चाहने वाली
1: जी,
0: है। जैसे मैंने बताया कि जो बैंगन का पौधा है काफी हार्ड होता है
1: जी,
0: जो हार्ड पौधे होते हैं वो कम पानी चाहते हैं
1: जी,
0: लेकिन साखी और जो पालक है
1: जी
0: ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, तो हमें ऐसी सब्जियां ज्यादा उगाना चाहिए जो हार्डी नेचर की हो, जो हार्ड हो, जो आसानी से पानी की कमी को झेल सकती हो
1: जी,
0: तो ऐसे करके मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते
1: जी। और चलते चलते सर हमारे युवा साथी जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: सबसे मैं अपने सभी युवाओं से ये आग्रह करता हूँ या निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग जो है एग्रीकल्चर को बढ़ाइए, एग्रीकल्चर बढ़ाइए और एग्रीकल्चर पढ़िए, क्योंकि एग्रीकल्चर का स्कोप आज के टाइम में आने वाले भविष्य जो है वो एग्रीकल्चर का होगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे केमिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो जितने केमिकल की तरफ जा रहे हैं उन्हें नुकसान हो रहा है, और जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक पाएंगे किसान करेंगे और एग्रीकल्चर को खेती को जो है एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी से करेंगे, नई नई टेक्निक से करेंगे, तो उससे हमें ज्यादा लाभ होगा, और हमारे सभी जो है जितने भी युवा है सब एग्रीकल्चर करके बहुत भविष्य बना सकते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि एग्रीकल्चर कर एग्रीकल्चर बीएससी से इतनी वैकेंसी आई इतनी बहुत सारी, तो बीएससी एग्रीकल्चर करें और उसको एग्रीकल्चर करने के बाद अपने घर पे भी इसको फॉलो करें और अपने कैरियर को बढ़ा सकते हैं
1: जी, जी।
0: तो ये हमारे कृषि का ये भविष्य है, और सब्जी उत्पादन फल उत्पादन फ्लावर उत्पादन इसको करके हम जो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, और मैं चलते चलते ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब्जी उगा रहे हो सब्जी तो उगाइए ही साथ साथ में फूल भी उगाइए, क्योंकि अगर सब्जी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फूल से भी हम सहायक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं सभी लोगों से धन्यवाद करना चाहूंगा, नमस्कार,
1: धन्यवाद सर।

0: एक बार फिर से साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरपाल सिंह जी को, जो कि आपको बता रहे थे कि किस तरह से हम वैज्ञानिक तरीके से एक खेती करके और साथ में सब्जियों का व्यवसाय करके एक कैसा मुनाफा कमा सकते।
1: बिल्कुल, उन्होंने साथ में ये भी बताया कि किस तरीके से इस बुंदेलखंड क्षेत्र में किस किस प्रजाति की सब्जियां को उगाकर हम अपने व्यावसायिक तरीके से इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर बात करें बैंगन की, बात करें प्याज की, बात करें गोभी की, तो इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे सब्जियां उगाकर, क्योंकि दो और तीन महीने की ये सब्जियां रहती हैं, तो दो तीन महीने में हम अपने खेतों में छोटे छोटे खेत की क्यारी बनाकर उसको लगाकर यदि हम बाजार में पैकिंग कर उसको बेचा जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा और इससे ढेर सारी आपकी इनकम भी जनरेट होगी। तो हम ऐसे व्यवसायों को चिन्हित करें जिसमें लागत भी कम लगती है और मुनाफा बहुत अधिक होता है।
0: बिल्कुल, और साथ में डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात जो बताई है कि जब भी आप अपने खेतों में कोई भी फसल या कोई भी सब्जी लगाना चाहते हैं उससे पहले मृदा परीक्षण आप जरूर करवा लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है और कौन सी खाद आपको उसके लिए डालना सही होगा।
1: बिल्कुल, और दूसरी अगर बात करें ऑर्गेनिक पद्धति की बात करें कि

0: जैविक पद्धति से यदि आप खेती करते हैं और उसमें सब्जियां उगाते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जो अभी केमिकल भरी खाद हम इस्तेमाल करते हैं और केमिकल भरी खातों की सब्जियां जो हम खाते हैं, तो उसमें हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो ऐसे में यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से, जैविक पद्धति से यदि हम खेती कर सब्जियां उगाए, तो इसका भाव भी आपको अच्छा मिलेगा और उसमें पैदावार भी अच्छी होगी और उसमें मुनाफा भी बहुत अच्छा होगा यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से करेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे वो फलों की बात कर ले या सब्जियों की बात कर ले, तो जल्दी से जल्दी हमें कैसे मिल जाए इसके लिए भी कई तरह के केमिकल्स वगैरह चलते हैं, इंजेक्शन जो लगा के सब्जियों में, एक ही रात में सब्जियां बड़ी हो जाती है, उनको सुबह अपन बाजार में बेच भी सकते हैं। तो ऐसी सब्जियों से कोशिश करें कि आप बचें, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। और अगर कोशिश कर सके आप तो घर में ही अपनी एक क्यारी बनाकर उससे भी आप सब्जियां, रोज की जरूरत वाली चीजें जैसे मिर्ची है, धनिया है, टमाटर है, इनको गमलों में लगाकर भी आप उगा सकते हैं। लेकिन अगर व्यवसाय तरीके से आप करना चाहते हैं तो फिर आप जरूर मिट्टी का परीक्षण करवाएं, इसके बाद ही आप अपने खेतों में कोई अच्छी सब्जी और सब्जियों के साथ में आप फूलों की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक तरफा आपको मान लीजिए सब्जी में कहीं ना कहीं छोटा बहुत घाटा अगर होता है, तो वो फूलों के माध्यम से आपका बराबर का लेवल आ जाएगा।
0: चलिए अब हमारा बरसा समय होता है इस कार्यक्रम आजीविका से विदा लेने का, क्योंकि हमारी बातचीत भी बहुत हो चुकी है और हमारे साथियों को बहुत अच्छी बातचीत भी लगी होगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी बातें आप लोगों तक पहुंचे और उस बातों को आप अपने जीवन में उतार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लाभ लें। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप जब हमें फीडबैक देंगे कि आपके कार्यक्रम को सुनकर हमने इस कार्य को किया है और अपनी आय में वृद्धि की है।
1: बिल्कुल, आपने जो एक बात कही थी कि बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथियों को लगी होंगी, तो ये पता हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो तभी पता चलेगा जब हमारे साथ ही हमें फोन के माध्यम से या फिर पत्र के माध्यम से अपनी राय और सुझाव इस कार्यक्रम के बारे में देंगे। क्योंकि साथियों, आप जब हमें राय और सुझाव देंगे तो हम उसके हिसाब से आपके लिए और बेहतर कार्यक्रम कैसे बना सकते हैं, इसके भी सुझाव आप हमें दे सकते हैं। तो जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए जिस पर आपको पत्र लिख के ये बताना है। इसके लिए हमारा पता होगा
0: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा।
1: साथ ही हमारा फोन नंबर भी है जिसके माध्यम से आप अपनी राय, सुझाव और कार्यक्रम का फीडबैक, और इसके अलावा भी आप अगर कुछ और बात करना चाहते हैं, जैसे कोई नए व्यवसाय के बारे में आप बताना चाहते हो, या फिर आजीविका कार्यक्रम से आप जुड़े रहने के बाद आपने क्या बदलाव किया है अपने जीवन में, अपने पर्यावरण में, अपनी आय में, अपनी रोजगार में, कुछ भी अगर आपने बदलाव किया है तो आप फोन के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर होगा
0: 9425147726।
1: दोस्तों, अब दीजिए हमें इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत, हम जल्द ही आपके सामने फिर से आएंगे, यानी कि रेडियो पर फिर से आएंगे इसी कार्यक्रम में इसी तरह की नई नई जानकारियों के साथ। अब दीजिए हमें जाने की इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे,
0: तब तक के लिए नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष। और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम
0: हम होंगे कामयाब,
1: और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम इसमें लेकर आते हैं, और खासतौर पर उन छोटी छोटी बातों पर हम बात करते हैं जो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी रहती है। चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें, चाहे वो उनके आजीविका को लेकर बात करें, चाहे वो उनके

0: वैकेंसियों को लेकर बात करें, यानी रोजगार सूचनाओं को लेकर बात करें, तो हम तरह तरह के कार्यक्रम इस हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं।
1: और चाहे हम छोटा काम बड़ा मुनाफा की बात करेंगे तो आप भूल ही गए थे मनीष जी।
0: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और हम अपने युवा साथियों के लिए ये सारे कार्यक्रम हम लेकर आते हैं। आज चूंकि हम मुझे यह कार्यक्रम आज सुनेंगे और इसमें जानेंगे, चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि किसान साथियों की अगर बात करें, खेती किसानी का हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और ऐसे में हमारे किसान साथियों की किस तरीके से आय दुगनी हो, तो कैसे दुगनी हो सकती है जब तक हम किसी योजना का लाभ ना लें, या फिर हम लगे कुछ खेती किसानी में अलग करें, यानी आधुनिक पद्धति से किस तरीके से खेती करें। तो आधुनिक खेती अगर हमारे किसान साथी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती है शासन की ओर से, जिनका हम लाभ लेकर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल साथियों, और क्योंकि जब कोई योजना चलाई जाती है तो वो हमारे किसान साथियों के लिए ही होती है, अगर कृषि से संबंधित है तो। लेकिन बस जरूरत ये होती है कि उस योजना के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हमारे किसान साथी उस योजना का लाभ ले सकते हैं और कौन से वो किसान साथी हैं जो इस योजना के पात्र हैं।
0: और आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि सिंचाई का अब समय होगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है, और ऐसे में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं या फिर अपनी खेती जो जायज की खेती रहती है वो भी अपनी लगाकर उन्होंने खेतों में लगा दी है, तो सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में समस्या आती है कि पानी कहाँ से आए, कैसे पानी दे वो, तो पानी पर ही सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि योजना का हमारे किसान साथी लाभ लेकर और अपनी खेती को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल साथियों, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की हुई थी, और जिनके द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेती की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की गई थी,
0: और यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जाएगी जिसमें पानी की बचत भी हो, कम मेहनत हो और साथ में खर्चे की भी सही तरह से बचत कर सके, ऐसे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने की सुविधा हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि योजना किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं, कितना पैसा रहता है इसमें, तो आपको इसके भी बारे में हम जानकारी दे देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अनाज के लिए कृषि सबसे ज्यादा जरूरी रहती है, और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई के अच्छे साधन और संसाधन आपके पास उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल साथियों, जैसे कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानों के खेत खराब हो जाएंगे और जिससे उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा और किसानों को उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कॉपरेटिव जो कंपनियां रहती हैं उनके माध्यम से उत्पादक किसानों के समूह के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है,
0: और यह राशि वर्ष 2026 तक इसका विस्तार इसका किया जाएगा, और साथ साथ में 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष के विस्तार के लिए 2026 तक संचालित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। और साथ साथ में आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को प्रदान की जाएगी, और साथ साथ में 50% सब्सिडी की राशि जो सीमांत किसान रहते हैं उनको प्रदान की जाएगी, और इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जो रहते हैं कृषि विभाग के उन्होंने ये साझा की है। इसके अलावा फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी, साथ साथ में 50% की सब्सिडी अन्य किसानों को प्रदान की जाएगी। और इस योजना को लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो भी आपको साझा कर देना चाहते हैं कि इसमें जो जमाबंदी रहती है, ट्रेस माप रहती है यानी जो आपकी खसरा खतौनी की नकल रहती है, साथ साथ में प्लांट कोटेशन जो रहता है, आप किस चीज का प्लांट डालना चाहते हैं उसका कोटेशन भी आपको लगेगा, सॉयल वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो रहती है वो कृषि विभाग द्वारा दी जाती है, साथ साथ में बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि होना आपके पास अनिवार्य है। और इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा और यह 15 सितंबर 2021 से ये लागू किया गया था। और हर खेत को पानी योजना के लिए आर्थिक सहायता भी इसमें शामिल की गई है।
1: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है, जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इस योजना को देश के विभिन्न जिलों में होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया है, जिससे कि फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना आरंभ की गई है। हर खेत को पानी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी खेतों को पानी मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का उपयोग करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अब इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: अब बात आती है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जो 1706 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं उसके भी बारे में हम जिक्र करेंगे, साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 का उद्देश्य क्या है उस पर भी बात करेंगे, साथ साथ में प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इस पर भी, चूंकि खेती के साथ ही जुड़ी योजना है, इस पर भी बात करेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषता इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इसका लाभ कैसे ले सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक अच्छे से गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके अर्जुन मनीष
1: और आपके रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में, सुनते रहिए कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में।

0: रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में मुझे हक है, जिसमें हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के बारे में।
1: और साथ ही जैसे कि हमने बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1706 करोड़ जो रूपए अप्रूव किए गए हैं उसकी सहायता के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग 22 दिसंबर 2020 को संचालित की गई थी और इस मीटिंग में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1706 करोड़ रूपये आवंटित भी किए गए थे। मध्य प्रदेश का इसमें 682 करोड़ रूपये और 40,40,000 रुपए का शेयर भी है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली जिले शामिल भी हैं। अब हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे, हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि योजना का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएगी और हमारे देश के किसान किस पर निर्भर रहते हैं, वो भी पानी पर निर्भर रहते हैं, सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। तो ये कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज्यादा बल जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग है ताकि बाढ़ और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम ये कर सके, साथ साथ में उपलब्ध संसाधनों को कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ में किसानों की हमारी पैदावार भी बढ़ सकेगी। प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इसमें मुद्रा प्रति बूंद योजना 5 वर्षों के में देश के खेती वाले क्षेत्र के विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश में हर जगह पानी मुहैया कराएगी और देश के फसल राशन को बढ़ावा देगी। यह देश के किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेगी और इस प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रति फसल योजना के तहत अधिक फसल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन भी करेगी। अब विशेषताएं क्या क्या है वो भी आप जान लीजिएगा।
0: श्रोताओं, सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के अंतर्गत पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी। इसी के साथ यदि किसान द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि का भी बड़ा महत्व है इसमें और उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यदि फसलों के सही प्रकार की सिंचाई प्राप्त होगी तो पैदावार भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना का लाभ वह सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन और उस जमीन पर वो खेती करते हो, जल का स्रोत हो। इसके अलावा वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सरकारी सदस्य हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदने पर इस योजना के अंतर्गत 80% से 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
1: अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो बता देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो कंपोनेंट है वो है कन्वर्जेशन विद नरेगा, यानी

0: जो रहता है नरेगा का, उसके माध्यम से आपको पैसा मिल सकता है, वाटरशेड परियोजना के माध्यम से मिल सकता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप अदर इन्वेस्टमेंट पर भी पैसा हम निकाल सकते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन हर खेत के पानी खेत में, इस पर भी हमारे इस योजना को रखा हुआ है। पात्रता क्या होनी चाहिए? इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होंगे, ट्रस्ट भी होगा, सहकारी समितियां होंगी और जो कोऑपरेटिव कंपनियां जो रहती हैं उनके उत्पादक कृषकों के समूह यानी एफपीओ के सदस्य भी इसमें रहेंगे और अन्य पात्र जो पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्य भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब दस्तावेज क्या क्या लगना चाहिए इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के दस्तावेज जो है वो इस प्रकार से है, आपको जरूरत पड़ेगी आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागजात, जमीन की जमाबंदी, खेत के नकल, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
0: और हमारे साथी सोच रहे होंगे कैसे आवेदन करें, तो योजना की जो जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए अधिकारित पोर्टल स्थापित किया गया है, यहाँ पर योजना से संबंधित हर जानकारी विस्तार पूर्वक तरीके से बताई गई है। पंजीकृत या आवेदन के लिए राज्य सरकार अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती है। अगर आप योजना के आवेदन के लिए इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश के कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन संबंधित जानकारी ले सकते हैं और प्रतिक्रिया जो इसमें रिपोर्ट देखने की प्रतिक्रिया जो रहती है वो भी आप ध्यान से सुनी होगा।
1: बिल्कुल साथियों, एमआईएस रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा, इसके पश्चात आपको एमआईएस रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुलकर आएंगे, जैसे अचीवमेंट रिपोर्ट, कंसोलिडेट एक्टिविटी, डाइव ओटीएफ, वन टच फॉर्मेट, डीआईपी डॉक्यूमेंट अपलोडेड, पन ड्रॉप मोर क्रॉप डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीडीएमसी एमआई वर्क फ्लो सिस्टम, ड्रिप डाउन प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको व्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा, संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी।
0: तो ये सारे दस्तावेज हमने बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगर आपको नहीं लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी रहते हैं उनके पास जाकर पूछना होगा और ऑनलाइन इसके आवेदन जमा करने होंगे। तो ये जानकारी आप जो हमने कार्यक्रम के माध्यम से बताई है तो हमारे किसान साथी इसका लाभ ले सकते हैं। और साथियों, अब हमारा वक्त भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का, तो इस पर यदि आपको कोई विचार देना है या टिप्पणी करना है या फिर आपको फीडबैक देना है तो दे सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
1: हमारा नंबर है 9425141726।
0: तो आपके रेडियो साथी मनीष
1: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुने के बारे हमारे सब साथियों को सब हमारी प्यारी प्यारी सी बहनन को बरसा बहन की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंचा दे। साथियों देखो आप तो जानते ही होगी कि ई वक्त और आज के दिन खास तौर से हम आप सबके लाने लेके आउेंगे कार्यक्रम अम्मा के चौके से। जी हाँ सखियो, और अम्मा के चौके में अपन और बढ़िया बढ़िया सी रेसिपी बनाने की विधियों को सीखेंगे। देखो

खाना बनाओ तो बहुत सरल बात हैगी और हमारी सब बहनें अच्छी तरह से जानती हैं, लेकिन खाना बनावे के संगे कौन कौन सी बातन को ध्यान रखे जज्जी अपन को, या फिर मान लो अपन को नई चीज सीखने हैगी तो कैसे सीखे। तो भैया रेडियो बुंदेलखंड एक बढ़िया माध्यम है वो अपना, और इमें जो हम आपको विधि बताऊ थे या जो सखियों से बातचीत कर देंगे सो उनकी बातें सुन के और आप अपने खाना पे जो है और स्वादिष्ट चार चांद लगा सकती होंगी, है ना? आपको देखो खाना पे भी चार चांद लगा लगे। तो सखियों देखो आज हम आपके लाने हैं कार्यक्रम अम्मा के चौके में लेके आए हेंगे सोयाबीन चीनी बनावे की आसान सी विधि। अब आप सब जने सोच रहे हो जो कहो सोयाबीन की बड़ी खाई थी और सोयाबीन आलू में बना के खाओ तो जो सोयाबीन चीनी बनाने की विधि कैसे हुजे? बिल्कुल आपके मन में जो सवाल खटक रहे हो वो हम आपको उनको समाधान भी बता रहे हैं, क्योंकि इसकी पूरी विधि और काका सामग्री में लगने हैं वह हम आपको जरूर बता रहे हैं। तो बने रहो हमारे संगे और सुनो जो कार्यक्रम। सो आओ अपन सीखत हैंगे सोयाबीन चिली कैसे बनाऊ थेंगे इसके बारे में कछु खास बातन खोन।

ग्रीन चिली एक ऐसी डिश हैगी साथियों जो सभी जने पसंद करत हैंगे, सबको पसंद जा आ जाऊ थेगी। काहे कि स्पाइसी खावे वाले लोग खूब ज्यादा पसंद करत है, यानी कि जो तेज तर्राट खावो यानी ज्यादा मिर्ची वालों खाना खाऊ थे उनको भी जो ज्यादा पसंद आऊ थे वो। सोयाबीन चिली पौष्टिक चीजन से भरपूर होतेगी, काहे कि इनमें हम बहुत सी सब्जियों को भी इस्तेमाल करत हेंगे। देखो साथियों, जब अपन नॉर्मल सी सोयाबीन की बड़ी बनाऊ थेंगे तो अपन क्या करते कि या तो गला के से तो सोयाबीन अकेले बना लेते हैं, या फिर एक नौ तरीका और है कि अपन उन्हें जो है चावलन में बना लेते थेंगे है, या फिर एक और जो है कि आलू में मिलाकर बना लेते हैं। लेकिन जो अपन सोयाबीन चिली बनावे वाए हैं इनमें क्या करने अपन को कि बहुत सारी सब्जियां को भी मिक्स करने। सो जी मैं कहूंगी कि पौष्टिक चीजें अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा पहुंच पेगी। तो इन्हें आप सबको बता दी गई के रोटी चावल या फिर आप ही खो ऐसे भी खा सकते हैं, यानी कि बिना रोटी चावल के भी आप खा सकते हैं खूब मजे लेके। सोयाबीन चिली को आप 15 से 20 मिनट में भी बना सकते हैंगे, और आप चाहो तो ये को रसादार भी बना सकते हैंगे, मतलब ज्यादा रसा नहीं गाढ़ी गाढ़ी सी एकदम सी बना सकते हैंगे, या फिर सूखी आप बनावो चाहो तो सूखी भी इको बना सकते हैंगे। तो चलो साथी, आप बहुत देर से आप सुन रहे हैं कि सोयाबीन चिली बन रही सोयाबीन चिली, लेकिन कैसा बनाना जो तो अपन को सीख नहीं आया ना। तो चलो अपन देख देंगे कि सोयाबीन चिली बनत कैसी हैगी, और इको बनाने के लाने सबसे पहले जो सवाल अपने मन में आउट है वो जो ही है वो के सोयाबीन की सामग्री का हो जाए, यानी सोयाबीन चिली बनावे के लाने सामान अपन और उनको का चाहने उनके बारे में एक नजर एक लिस्ट अपन और बना लेते हैं। ठीक है, तो बहनों लिस्ट बनावे के लाने आप का करो, एक कॉपी और पेन उठा लो जल्दी से। कहा होते कि कभी कभी अपन और अब पहले आप पेन उठा लो फिर हम बाद में बताएंगे। ठीक है, सो का होती हम का कह रहे थे कि अपन हो रहे का करती कि चीजों को ध्यान तो रख लेते, लेकिन जब बनाने के लाने बैठक ना सो चीजें आधी से ज्यादा दिमाग से बाहर निकल जाती। काहे कि अपने दिमाग में और बिला सारी जिम्मेदारी रहती है, बहुत चीजें इताएंगी उताएंगी सब सोचने आता बन है कि नहीं। सो ये सब कौन चीज अपन भूल ना जावे, सो पेन कापी अपन उठा के और उन्हें नोट कर ले। ठीक है, तो अब उठा लिया अपने पेन कापी। चलो तो अपन शुरुआत करे थे सामग्री का अपन को चाने हैगी। तो सामग्री में सबसे पहले देखो सोयाबीन की बरी अपन को लेने हैंगी 500 ग्राम, प्याज अपन को एक ले लेने हैं, हरी मिर्च में चार ले लेवे, और शिमला मिर्च अच्छी खासी आउट हैगी सो एक से दो पीस शिमला मिर्च की ले लेवे। हरी प्याज अगर मिल जावे आपको तो एक से दो जो है हरी प्याज आप ले सकते हैंगी। गाजर इन्हें अगर आपको मिल जावे तो गाजर भी आप एक ले सकते हैं। तेल की अगर बात करें तो देखो साथियों, आप जाना थोगे कि तेल जो है वो अपने अनुसार डालना चाहिए, कहे कि कछु जने ज्यादा खाऊ थे और कछु जने कम खाऊ थेंगे। सो अपन को ध्यान रखने है वो कि तेल अपने हिसाब से यानी 100 ग्राम आप ले लो। जीरा इनमें जरूर डाल लेवे एक चम्मच, लहसुन अदरक को पेस्ट भी अपन को दो चम्मच इनमें ले लेने हैं, यानी कि लहसुन और अदरक को दो मिनट को मिला के पेस्ट बनाकर दो चम्मच हो जावे एक अपन को लेने हैं। ठीक है, काली मिर्च भी अपन को लेने हैगी एक से दो चम्मच, और मक्का को आटा अपने सबके घर में मिल जाए।

मतलब बहुत कम मिला था वो, अब तो पहले बहुत जल्दी मिल जाऊ तो मक्का को आटा ही में से केवल अपन को 2 चम्मच चाने हैं, नमक जो है वो स्वाद अनुसार चाने हैं। देखो अब कहे कि नमक की अगर बात हम आपको बता दें तो बात गलत हो जाएगी, आप 1 चम्मच डालो या 2 चम्मच, और ज्यादा हो जाए या कम रह जाए तो आप हमें उल्टी बातें सुनाओ है। तो इसे नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिए। अब आगे एक और चीजन कछु चीजन के हम नाम बता रहे हैं जो आपको मिल जाए तो ठीक है, और नहीं मिल रहे तो आप बिना ई के भी बना सकते हैं। जैसे कि सोया सॉस 2 चम्मच चाने हैं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं दही के बिना भी बन जाए। मिर्ची सॉस जो तो मिल जाए आसानी से, उसी को 3 चम्मच डाल लीजिए। अब विनेगर चाने हैं अपन को 2 चम्मच जो चाने, और नहीं मिले तो ई के बिना भी चल जाए। धनिया पत्ता तो देखो मिल गया है, वो इनके बिना ना चले लेकिन ठीक है, तो धनिया पत्ता ले लो। अब जा तो हो गई सामग्री के अपन को सामग्री का चाने हटी, अब अपन बात कर ले गए कि अपन को विधि यानी के बनाने कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले काम ही में जो करने हैं, अब काहे के बिला दो हो गई बातें करत कर सो हवा मन कर रहा हो कहना है देख छोटो सो कछु सुन ले गए अपन, और फिर सुनने के बाद फिर अपन बिधि जान लेंगे, ठीक है। तो अपन ने तो एक बढ़िया से लोकगीत को सुना थेंगे, और लोकगीत सुनने के बाद फिर से कार्यक्रम में लौट के आ रहे कार्यक्रम अम्मा के चौके में। बने रहो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा के संगे, सुनत रहो कार्यक्रम अम्मा के।

अपना रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे साथियों रे देखो अबे आप सुन रहे थे इन्होंने से लोकगीत को जिखो गा रहे थे काशीराम और उनके साथी। अब अपन बात कर ले दें कि अम्मा के चौके में जो विधि की अपन बात कर रहे थे कि विधि कैसी हैगी चिल्ली सोयाबीन बनावे की सो अपन उनको देख लेते। तो सबसे पहले अपन को क्या करने है वो कि पानी में थोड़ा सा नमक डाल ले गए और सोयाबीन की जो बरी अपन ने लई है उनको डाल के 2 मिनट तक उबाल ले गए और उबलवे के बाद फिर उखो ठंडे हो गए के लाने छोड़ देवे अपन। ऐसा नहीं है कि एकदम से जब उबल गई सो अपन एकाएक जल्दबाजी में जब रखेंगे सो गरम गरम उन्हें पानी में से निकाल लो, ऐसा नहीं करने। ठंडे होने देवे पहले फिर उसके बाद उन्हें पानी में से निकाल दें। तब तक अपन क्या कर लेंगे कि अब अपन प्याज शिमला मिर्च हरी प्याज और हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़न में काट लेंगे और इनको काटते समय आपको ध्यान रखने हैं कि जो गाजर और शिमला मिर्च प्याज जो भी आपने चीजें ली हैं इनको पहले धो लेंगे अच्छी तरह से। कब होती है कि जल्दबाजी में अपन इन चीजों पे ध्यान तना कम दे पा उठेंगे सो आप अच्छी तरह से इन्हें छील लेंगे और धोने तो आपको जरूरी है। अब क्या करवे कि जब तक अपनी सोयाबीन जो है वह अच्छी तरह से ठंडी हो गई हुच्चे सो सोयाबीन को पानी निकाल ले दे यानी को उखो निचोड़ ले दे। आगे अपन बता चलवे कि इमे अभी में साथी अपन को क्या करने है वो के अंडा सोया सॉस टोमेटो सॉस काली मिर्च अदरक लहसुन को पेस्ट और मक्का को आटा जो है और थोड़ा सो नमक डाल के इनको अच्छी तरह से मिला ले दे। एक बार फिर से सुन ले गए, अंडा यानी अंडा को फोड़ लेंगे, सोया सॉस टमाटो सॉस काली मिर्च अदरक लहसुन को पेस्ट मक्का को आटा और थोड़ा सा नमक डाल के इखो अच्छी तरीका से मिला लेंगे। फिर इखो तेल में अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे और सावधानी से करने हैं वेनो आपको फ्राई काहे कि देखो फ्राई करत में भी कई सारी ऐसी अचूक अपन से हो जाऊ थेगी जो अपन को का कहते घटना भी लग जाऊ थेगी। जैसे जल्दबाजी में अगर अपन फ्राई कर थेगे तो तेल जो है हाथन पे चक जाऊ थे वो जिससे अपन जल जाऊ थेगे सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने है। वो आपको ध्यान रखने हैं कि सावधानी से अपन को जो है इन्हें तलने हैं। वो फिर क्या करवे कि गैस पे एक करज्जा को चढ़ावे और उनमें तेल और जीरा डाल लेवे यानी कि अब अपन बनावे की बारी आ गई सो करैया में तनक से तेल डाल लेवे और फिर उनमें जीरा डाल देवे। जीरा डालने के बाद अपन धोखा करने हैं वो को प्याज और गाजर को

प्याज देवो तनक देवता को खो भूंजत रवे। भूंजबे के बाद जब प्याज भून जावे तो वो कलर जो है सुनहरे कलर को हो जाएगा। फिर उन्हें शिमला मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल के तनक देर तक और भूंज ले गए। फिर इन्हें सोया सॉस, टमाटो सॉस और विनेगर डाल देवे। इसके बाद सोयाबीन जो अपन ने निचोड़ के रखी होती है वो अलग से फ्राई कर लेवे और फ्राई करने के बाद थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरीका से मिला लेवे। सब चीजों को अच्छी तरह से मिला लेवे और ऊपर से ढक्कन लगा के एक कम से कम 2 मिनट तक आपको पकाने हैं वो, जिसे अपनी जो सोया चिली है वह अच्छी तरह से बनके तैयार हो जावे। और 2 मिनट से आप 5 मिनट भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी तरह से चीजें पक जावे। फिर इसके बाद आप जब ढक्कन खोलो इको तो अच्छी तरह से धनिया पत्ती धो के और इमें डाल देवे और गैस को बंद कर देवे। जब अपन परोसने की बारी साथी आत हैगी तो बढ़िया से धनिया ऊपर से अपन डाल के और सोयाबीन चिली को अच्छी तरीका से परोसे तो बड़ी स्वादिष्ट और खुशबू हैगी, देखो तो बढ़िया सी आउट हैगी। अब साथियों जाते अपन ने जानी कि सोया चिली कैसी बनत है, इसकी विधि अपन ने जानी। एक हो काका जाने हैं तो बनाबे के लाने वो सब जान लो है अपन ने। आगे कछु सुझाव भी इके लाने हैंगे, सो आप भी ध्यान से सुन लो। सोयाबीन को गर्म पानी में डाल के फुला लेवे। अगर आप सोयाबीन में अंडा मिलाऊ थेंगे तो टटोलत टाइम सोयाबीन ज्यादा तेल नहीं सूखत है वो और टेस्ट भी इको अच्छो होते वो। सोयाबीन को छानत समय तेल गरम, यानी के तलत समय तेल गरम होवो चज्जी और आँच धीमी हो जाइए। आप चाहे तो आप अपनी पसंद को भी सब्जी इमें डाल सकते हैं, यानी कि आपकी जो पसंद की सब्जी होगी वह भी इमें डाल सकते हैंगे और इको और स्वादिष्ट आप बना सकते हैंगे। तो साथियों जातो हती हमारी आज की रेसिपी और हमें पूरा पूरा विश्वास है वो कि आपको यह रेसिपी जरूर जरूर जरूर पसंद आई हुई। और साथियों अगर आपको ई के बारे में कुछ और पूछने हैं वो या फिर ऐसी ही आपको और भी रेसिपी हमसे पूछने हैंगी तो भी आप हमें जरूर फोन के माध्यम से बता सकते हैंगे और या फिर हमें चिट्ठी पत्री के माध्यम से भी बता सकते हैंगे। जी के लाने अपना पता है वो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेला के पास ओरछा। जो अपना पतो है वो जी पे अपने सब साथी भैया चिट्ठी पत्री के माध्यम से अपन को संदेश लिख सकते हैं। सुबह जरूर हमसे जुड़ गए और अपनी बात को जरूर रखवे। साथ ही आज के कार्यक्रम अम्मा के चौके से अब हमारे जाबे को समय हो रहा होगा और चलत चलत हम आपको सुनवा थेंगे बढ़िया सी गजल को। अब अपने रेडियो दोस्त वर्षा को दो जाबे की अनुमति, हमारी और आपकी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक के लाने खुश रहें, मुस्कुरात रहें और सावधानी पूर्वक से खाना बनाए अपन। हमेशा ध्यान रख रहे हैं कि किचन में जो है बाल बच्चन को संग में ना ले जावे, कहे कि किचन में ऐसी बहुत सी नुकीली चीजें होती जिनसे उन्हें नुकसान हो सकता है वो। तो अब हम चलत हैंगे और जल्दी आपसे फिर से मुलाकात हुई। तब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। जैसा कि मित्रों, हमारे किसान साथियों, आपको पता है कि खेत खलिहान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। वह समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से हो सकते, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसानों का, जान बैठा के हमारे विजय जी पूछा हुआ था। और विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सैंसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भाइयों, आज हम जो प्रतिवर्तीय फसलों में लगने वाले जो कवकजनक रोग है, उन पर चर्चा करेंगे। तो उनके बारे में, उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रबी वर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं, उनमें मधुरमिलासिता, चूर्णमिलासिता तथा उकता, यह जिसे मिलानी रोग कहते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण, यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोग मधु रोमिल आसिता की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है। और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है,

0: इस तरह का जो मौसम होता है, इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है,
1: जी
0: क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है। और रोग से संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के एक माह बाद ही हो जाता है, और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है, और 30 से 70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मधुमेह निवासिता का विशेष प्रभाव, वैसे तो कद्दू वर्गीय फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है, लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
2: मैम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें मतलब सब्जियां वो अपने खेतों में लगाएं, उनकी निगरानी किस तरीके से की जा सके?
0: तो इसमें सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब फसल लगाए किसान, तो फसल लगाने के पहले अपनी भूमि को तैयार कर ले। भूमि को तैयार करने का मतलब ये है कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके रोगजनक जो होते हैं वो मृदा में ही पाए जाते हैं, या फिर उन फसलों के बीजों में, जिन बीजों की बुआई की जाती है तो उन बीजों में पाए जाते हैं। तो यदि हम पहले से मृदा का अध्ययन कर लें और जो हमारे बीज है उनको उपचारित कर लें तो इन रोगों से बचा जा सकता है। जैसे गर्मियों में हम लोग गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दें तो उसमें मिट्टी में उपस्थित जितने भी रोगाणु होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और जितने भी खरपतवार हैं या अवांछनीय पेड़ पौधे हैं उनको हटा दें, क्योंकि उन पर भी जो है रोगजनक यानी कि उन पर रहते हैं, तो अगर उनको हटा दिया जाए तो उनका जो है वो सोर्स खत्म हो जाएगा, सोर्स यानी स्रोत खत्म हो जाएगा, रोग फैलेगा। तो इस तरह से किसान भाई बिना लागत के ये छोटी छोटी क्रियाएं करके रोगों से जो है वो अपनी फसल की सुरक्षा कर सकते हैं।
2: बहुत बढ़िया आपने बताई है। एक चीज और जानना चाहेंगे, चूंकि जिन किसान साथियों ने अपनी फसल, जो अगर कद्दू वर्गीय की बात करें तो कद्दू वर्गीय की फसल उन्होंने अपने खेतों में लगा दी है, तो कौन कौन से ऐसे मतलब रोग इस मौसम में देखने को और सुनने को मिल रहे हैं, और रोकथाम के लिए अगर बात करें तो क्या उनको उपाय करना चाहिए?
0: जी वो मैं वही इसी शीर्षक पर आ रही हूँ। तो इसमें जो प्रमुख रोग है ये मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि इसमें प्रमुख रोग मैंने आपको तीन बताई है, मधुरोमिलासिता, चूर्णिलासिता, उत्तर या ज्ञानी रोग। तो ये आपको एक एक करके मैं इसके लक्षण, इनसे होने वाले नुकसान और साथ ही साथ इनके जो निवारण है वो बताती चलती हूँ। तो सबसे पहला जो रोग है मधुरोमिलासिता, जो कद्दू वर्गीय फसलों में देखने को मिलता है, तो इसके अगर लक्षणों की बात करें हम तो इसकी पत्तियों की ऊपरी सतह जो होती है उस पर छोटे छोटे हल्के हरे और पीले धब्बे बनते हैं, जो कि जल्दी ही भूरे रंग के हो जाते हैं, और इनकी शिराओं तक ही सीमित रहते हैं। जो शिराएं होती हैं वहाँ शिराओं पर ये धब्बे नहीं पड़ते, तो वहां से ये थोड़े से मर जाते हैं, तो ये धब्बे जो है वहाँ जिस जगह शिरा पाई जाती है वहां पे कोने हो जाते हैं थोड़े से, और इन धब्बों के ठीक नीचे यदि हम देखते हैं तो कवक का जो है वो जाली नुमा बैगनी या नीले रंग का जो होती है वो वृद्धि दिखाई देती है, और संक्रमित पत्तियां जो होती है फिर जल्दी भूई होकर सिकुड़ जाती है, और उनका जो संरचना होती है वो विकृत हो जाती है, विकृत होकर ये पत्तियां जो होती है पौधे से गिर जाती है। अगर संक्रमण उग्र रूप में होता है तो फल छोटे होते हैं, संख्या में कम बनते हैं तथा विरूपित हो जाते हैं, यानी कि उनकी संरचना जो होती है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इस रोग की रोकथाम के लिए जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, सर्वप्रथम तो खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए और आगे की बुआई करना चाहिए। खेत की बुआई करने से पहले खेत की अच्छी तरह से सफाई कर देना चाहिए, यानी कि कोई भी खरपतवार या अवांछनीय पौधे उसमें नहीं होना चाहिए। और अगर ये समस्या बार बार आ रही है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है तो हमें कम से कम 3 साल का फसल चक्र अपनाना चाहिए, यानी कि कद्दू वगैरह फसलों को 3 वर्ष तक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, ये तो हमारे जितने भी निवारण हो गए ये बिना किसी खर्च के हो गए, और अगर हम बात करें रासायनों के द्वारा, अब भाई रोग आ ही गया है और फसल खड़ी है तो फिर उसको जो है नियंत्रित करना

0: जरूरी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैनकोवेट 0.25%
1: जी
0: और इसे क्या करते हैं 2.25 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव करते हैं। तो अगर वो गंभीर अवस्था में, बहुत ज्यादा गंभीर अवस्था में हो, तो मेटालैक्सिल और मैनकोवेट इसका जो है इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, और इसका इसकी मात्रा जो होती है 2.5 ग्राम मेटालैक्सिल और मैनकोवेट को 1 लीटर पानी के साथ मिलाकर और इसका छिड़काव करने से इस रोग को नियंत्रित किया जा सकता है।
1: जी मैम, मैम अगर शुरुआत की अगर बात करें मैम, तो शुरुआत में हम जब अपने पौधे की रोपण करते हैं या अपने सब्जियों को लगाते हैं, उस समय जब हम बीज उपचार की बात करते हैं, तो किस तरीके से हमारे किसान साथियों को, और खास तौर पर अगर महिलाओं की मैम बात करें, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि खेतों में कंधे से कंधे मिलाकर महिलाएं खेतों में काम करती हैं, तो उनको सबसे ज्यादा ये सलाह बहुत जरूरी है कि किस तरीके से वो अपने खेतों में जब सब्जियां लगाएं तो बीज उपचार किस तरीके से करना चाहिए।
0: बीज उपचार देखिए, आजकल सब मतलब हर जगह यही बात बार बार बोली जा रही है कि हम कम से कम रसायनों का उपयोग करें।
1: यस,
0: तो उसके लिए सबसे अच्छा हमारे लिए एक विकल्प ये है कि हम ट्राइकोडर्मा जो है, और जो आपके मेडिसिनल प्लांट है, इनसे बनने वाले जो इनके जूस हैं, उनको जूस को निकाल के और उससे बीज उपचारित करें, तो वो इफेक्टिव भी होते हैं, कम को उनकी लागत भी कम होती है, और इससे किसी भी रोग को रोका भी जा सकता है।
1: शुरुआत से ही हमें मतलब इसका ध्यान
0: जी
1: रखना
0: जी
1: चाहिए।
0: जी जी
1: और अगर मैम पानी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सब्जियां रहती हैं जिनको अधिकतर पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी की अगर बात करें तो पानी की किल्लत अपने बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है, तो ऐसे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो।
2: साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ। इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारे जो विषय विशेषज्ञ है मैडम, उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।

0: जहाँ तक पानी की बात है तो देखिए, इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय फसलों में, आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो
1: जी भाई,
0: इनकी कृपा हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई, इस तरह की और करेला, इस तरह की सब्जियों को लगाएं, अप्रिशिएट
1: बिल्कुल भाई
0: करें।
1: जी भाई। और दूसरी अगर बात करें हम, टमाटर अगर देखा जाए

0: तैयार हो जाता है तो उसमें पछेती झुलसा रोग आ जाता है। तो ये दोनों रोग जो होते हैं वो टमाटर की क्वालिटी को खराब करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसको भी खाली डाल देते हैं।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: इन दोनों रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करे तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है।
1: तो मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना
0: जी
1: चाहिए
0: जी शुरुआत से किसान को शुरुआत से अगर ध्यान देगा
1: जी।
0: तो उसकी रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और इसका एक बेस्ट अल्टरनेट ये है, मतलब विकल्प ये है कि किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए। रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए, वैरायटी को बदल बदल के लगाए। क्योंकि क्या होता है जो रोगजनक होता है, जैसे आपने देखा होगा मनुष्य में जो रोग होते हैं तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं। तो डॉक्टर भी जो होता है वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। तो इसी तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वैरायटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोगजनक है जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है, वो तोड़ नहीं पाता है, वो अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लेता है ना। जब लगातार एक ही रोगजनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है वही रोगजनक और वही रोग आ रहा है तो, और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वैरायटी लगा रहे हैं तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप उसको बदल बदल भी लगाएंगे ना तो रोगजनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा।
1: मतलब इसका ये कारण, मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं है, आप एक्सपर्ट हैं। जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, तो इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है?
0: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए, वो मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें, इसकी वजह से जो विकल्प है उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी। और जब खेत बैरन पड़े रहते हैं ना, उनकी खाली पड़े रहते हैं तो उस समय जो है अगर ढींचा लगवा दिया जाए खेत में तो उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर कर रही है मिट्टी।
1: मैं एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर खरबूज और तरबूज की पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज देखा जाए तो ये 90 मतलब 100 में से 10% ही बचा है कि खरबूज और तरबूज लोग उगाते हैं। तो क्या कारण हुआ कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है ये सब्जियां? मतलब ये
0: अब ये बरुआ सागर का जो टेक्सचर है, मिट्टी का नमूना है, एक तो इसकी जांच करवानी पड़ेगी कि भाई मिट्टी में क्या उत्पादकता में फर्टिलिटी में कमी आई है। दूसरी चीज ये है वहाँ रोग कुछ ऐसे रोग होंगे जो हर साल कोई रोग अगर कम मात्रा में आता है और किसान ध्यान नहीं देता है तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है, फिर उसके अगले साल उससे ज्यादा मात्रा में आता है। तो हो सकता है वहाँ जो रोग आ रहा है वो प्रबल हो गया है जो उसकी पैदावार को कम कर रहा है। और एक नो डाउट अब हमारे यहाँ पानी की कमी तो है ही, क्योंकि खरबूज खरबूज ये वाली फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। और अगर पानी की कमी है तो फिर किसान उन फसलों को लगाना भी छोड़ देता है, कम कर देता है या लगाना छोड़ देता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं सबके।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। लेकिन हम आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कल एक सवाल आया हुआ था। मतलब ये हम जब लाइव कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय एक हमारे श्रोता साथी ने एक सवाल पूछ लिया था, वो सवाल हमारे मन में कल से ही गूंज रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे मतलब पूछा जाए वो सवाल को। सवाल ये था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खासतौर पर देखा जाए तो महिलाओं का पर इनका ज्यादा असर देखने को और सुनने को मिलता है। अगर हम बाल विवाह की इसमें बात करें तो जलवायु परिवर्तन और बाल विवाह इसको अगर जोड़ा जाए, देखा जाए, क्योंकि एक दूसरे से ये मतलब जुड़े रहते हैं, आपका क्या मानना है कि क्या कारण है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खासतौर पर महिलाओं की और खासतौर पर जो बाल विवाह देखने को सुनने को

0: मिलता है, उसके बारे में मैम आपका क्या ख्याल है मैम?
1: देखिए, जलवायु परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, स्वयं हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना पर्यावरण को सुरक्षित करने के तो उपाय नहीं किए हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने की सारी कसर, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है,
0: जी मैम,
1: तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और जहां तक बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन की बात है, तो उसमें ये जो है ना कि अब मैच्योरिटी लड़कियों में जल्दी हो जाती है, क्योंकि
0: जी मैम,
1: हम लोग जो है, हमारा खान पान ऐसा है तो
0: जी मैम,
1: हमारे यहाँ जो है लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है।
0: जी
1: दूसरे,
0: मैम,
1: हमारे हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जहाँ माहौल, जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ शिक्षा की कमी है,
0: जी
1: क्योंकि
0: मैम,
1: जहाँ शिक्षा की कमी है वहीं बाल विवाह होते हैं,
0: बिल्कुल मैम,
1: और
0: बिल्कुल
1: जहाँ शिक्षित हैं लोग वो इस चीज को समझते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है एक तरह से हमारे यहाँ,
0: जी मैम,
1: और इस कुप्रथा को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। तो
0: जी मैम,
1: लोग जो है वो अगर लोग शिक्षित हो जाए और हमारे पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए तो
0: जी मैम,
1: पर्यावरण भी सुधर जाएगा, और साथ ही साथ ये बाल विवाह भी जो है वो भी दूर
0: और
1: होंगे।
0: कहीं ना
1: इसका जो
0: कहीं
1: है
0: हमने भी
1: इसका
0: मैम,
1: एक और
0: जी
1: जी
0: मैम,
1: विकल्प यही है कि शिक्षा,
0: जी बिल्कुल, आपने
1: आप
0: सही
1: शिक्षित
0: बात कह
1: हो
0: दी
1: और
0: कि
1: दूसरों
0: शिक्षा
1: को
0: एक
1: शिक्षित
0: ऐसा
1: करें।
0: विकल्प है जिसको हमें समझना चाहिए, सोचना चाहिए। समस्या यहाँ पर
1: जब आप
0: मैम ये
1: शिक्षित
0: आती
1: होंगे,
0: है, जी
1: जी, जब आप शिक्षित होंगे तभी आप पर्यावरण को भी बहुत अच्छे से समझ
0: बिल्कुल
1: पाएंगे कि
0: बिल्कुल मैम,
1: पर्यावरण को हमें अपने कैसे बचाना है, क्या क्या
0: बिल्कुल
1: हम काम करें, हम वाटर सेविंग करें,
0: जी मैम,
1: और हम ऐसे जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो अपने दूध ले जाकर बस्सी से लगाएं, और जंगलों को ना काटें,
0: जी
1: जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो
0: जी मैम,
1: उसी इन सब चीजों से हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित हो सकता है।
0: कहीं ना कहीं मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब ये चूंकि हम तो एक्सपर्ट हैं नहीं, आप उसको भलीभांति जानती हैं, कहीं ना कहीं मैम जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, कहीं कहीं बर्बादी मतलब जाना किसानों की नुकसान हुआ है, जिस कारण से वो लोग क्या करते हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बच्चियों को वहां पर कहाँ ले जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह करने के लिए। तो आपका क्या मानना है मैम इस विषय को लेकर?
1: जी, ये बात तो सही है कि मुझे याद है ये 2005 to 2007 की बात है
0: जी
1: कि
0: मैम,
1: हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ना 2005 से लेकर 2007 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, तो किसान की पूरी खेती जो है वो बहुत ही कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। उस समय बहुत सारे किसानों ने, मजदूरों ने जो है वो पलायन कर दिया था दिल्ली की तरफ,
0: जी मैम,
1: दिल्ली की तरफ ही आसपास के जो बड़े क्षेत्र है वहां मजदूरी करने के लिए पलायन कर लिया था।
0: जी मैम,
1: तो अब उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि दूसरे शहर में अगर पलायन करने जाता है बंदा तो वो कमाने के लिए जाता है,
0: जी
1: अब वो कमाने के लिए वहां जाएगा तो बड़े शहर का खर्चा भी ज्यादा होता है, तो वो सोचता है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी जो लड़की या वो शादी करना है वो
0: जी मैम,
1: शादी करके, और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा और हम बांग्ला जो कमाएंगे वो परिवार को दे जाएंगे। तो
0: जी मैम, बिल्कुल
1: लेकिन ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं तो
0: जी मैम,
1: जलवायु में भी चेंज आएगा। आप देखिए जिस टाइम कोरोना था तो कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे, कोई
0: जी मैम,
1: भी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो वाहनों की वजह से जो पर्यावरण हमारा संदूषित हो रहा था वो एकदम साफ हो गया था, बिल्कुल
0: बिल्कुल मैम, जी मैम,
1: साफ हो गया था। तो उस समय जो है मतलब हवा भी बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि हवा को मिलना नहीं चाह रहा था,
0: जी मैम,
1: लेकिन हवा जो है बहुत जो प्रदूषित थी वो भी साफ हो गई थी। दिल्ली में भी जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं, क्योंकि
0: जी
1: उनका
0: मैम,
1: खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है। तो
0: जी मैम, इसका मैम बस लास्ट इसका सवाल रहेगा हमारा कि इसका समाधान मैम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए इसको?
1: इसको रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं तो शहरी लोग अलग अलग वाहनों से सफर करते हैं, तो बड़े शहरों में तो आजकल ये चल ही रहा है कि आपने सुना होगा कार

0: करते हैं। तो लोग जैसे जिनको एक जगह जाना है वो एक ही वाहन से जाए, दो चार लोग एक ही वाहन से जाए, पानी को कम वेस्ट करें, जल संरक्षण करें, और ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, उसे हम गुणवत्त करें ना कि उसे और बर्बाद करें।
1: मैम आपने समय दिया है इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका, पहले दिन से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि मैम आपने इतने कम समय में बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोता साथियों के जो मन में सवाल चल रहे थे उसका मैम आपने समाधान किया है, इसके लिए मैम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना
0: चाहेंगे।
1: थैंक यू मैम,
0: उन्होंने मुझे सुना और उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी जिससे वो फायदा उठा सके अपनों का। जी धन्यवाद,
1: थैंक यू। साथियों इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत खलिहान कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पर, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49, इस नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके हमारे फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बात है।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप फिर इबेरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और साथियों, हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली।